अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भज लो रे हरी, तन से भज लो रे हरी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम आजीविका में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, आप जानते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं इस बारे में हम कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताते हैं। कहा जाता है दोस्तों, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है और पद चिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। हाँ दोस्तों, ये कहावत जो कही जाती है, सुनी जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। छोटी छोटी कहावतों से कहा जाता है कि हम जब किसी के पद चिन्हों पर चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन से हम चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन द्वारा हम चलते हैं, तो हम आगे चलकर एक सफल उद्यमी माने जाते हैं। जो कि हमने कार्यक्रमों में पहले भी बताया था कि उद्यमिता क्या है, उद्यमिता होने के क्या महत्व है। आज के साथ ही हमारे कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सफल उद्यमी के क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे उनको व्यवसाय लगाने चाहिए जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सकी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम

0: मैं साथियों आपको ले चलते हैं हितेश धाकड़ जी के पास, जो उप निदेशक है हमारे औद्योगिक विभाग से, और साथ में कुछ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो उद्योग को लेकर काफी अच्छी उनको पकड़ है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिससे हमारे युवा साथी अपने कार्य में सफल बने, आगे चलकर सफल उद्यमी कहलाए। तो आइए हम आपको हितेश धाकड़ जी के पास ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे युवा साथी किस तरीके से सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। एक सफल उद्यमी जैसे हमारा साथी बनना चाहता है तो उसके लिए क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए?
1: एक सफल उद्यमी की पहली विशेषता होती है अनुभव।
0: जी
1: अनुभव और उसका ज्ञान होना।
0: जी
1: आप जिस भी उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं या जिस भी व्यवसाय की आप स्थापना करना चाहते हैं उसको आपको बारीकी से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप अगर हमारे युवा किसी उद्यम की स्थापना और अग्रेसित होना चाह रहे हैं या आकर्षित हैं तो उन्हें पहले ये निश्चित करके कि आप करना क्या चाहते हैं और आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र विशेष में जहां आप उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं वहां क्या डिमांड है और क्या सप्लाईज है। क्योंकि देखिए मार्केटिंग भी बहुत बड़ा इशू आता है।
0: बिल्कुल,
1: केवल उद्यम लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए।
0: जी
1: तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि पहले तो मार्केट स्टडी करें,
0: जिस
1: चीज की आवश्यकता यहाँ पे है
0: जी,
1: किस चीज की उपलब्धता वहां पर है
0: जी,
1: और जो हम उद्यम चलाने वाले हैं उसकी मार्केटिंग हम किस तरीके से लोकल में या बाहर के क्षेत्रों में कर पाएंगे।
0: जी
1: तो उसको उद्यम लगाने से पहले हमारे युवाओं को थोड़ा सा बेसिक जानकारी उस चीज की होनी चाहिए।
0: जी जी जी
1: अब बात आती है फाइनेंस की, वित्त पोषण भी एक समस्या रहती है उद्यमों के विकास के लिए।
0: जी
1: तो काफी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन की भी योजना है, केंद्र शासन की भी योजना, उनके अंतर्गत हम वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करा।
0: जी जी सर एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि व्यवसाय तो ठीक है लोग लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए, बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति को जाना जाए, तो क्या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे व्यवसाय संभव है जो कि आसानी से लोग कर सकते?
1: देखिए अगर ओरछा या फिर निवाड़ी जिले या बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ पे कई सारी संभावनाएं हैं।
0: जी
1: रिसोर्सेस हमारे पास प्रकृति की कृपा से हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज।
0: जी
1: तो एक तो मिनरल्स के क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है।
0: जी
1: हालांकि निवाड़ी के ओरछा तहसील में काफी सारी इकाइयां खनिज की लगी हुई है। इसके अतिरिक्त आता है आपका जो बढ़ती हुई जो आवश्यकताएं हैं, आप जो वुमन बैग्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें खात्मा करना है।
0: जी जी
1: ये संदर्भ रहना है तो फलस्वरूप एक उसकी वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता बढ़ेगी।
0: जी जी
1: पॉलिथिन का वैकल्पिक क्या हो सकता है? हम जूट के थैले, वुमन बैग जो क्या डिग्रेडेबल रहते हैं, जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसकी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं।
0: जी
1: इसके अतिरिक्त छोटे उद्यमों की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि सोना पत्तल हुआ।
0: जी
1: क्लायक ब्रिक्स हुआ।
0: जी जी जी
1: सीमेंट उद्योग हुआ।
0: जी
1: क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर और जो बाकी प्राकृतिक पत्ते इनकी भरपूर उपलब्धता है, तो सीमेंट और पेवर्स क्लॉथ वगैरह काफी संभावना इस क्षेत्र में है।
0: जी जी जी और यहाँ पर सर उद्योग स्थापित कर तो लेते हैं, लेकिन वो समस्या यहाँ पर आती है लोगों को कि उनको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता रहती है, तो क्या सरकार की ओर से ऐसी कोई ट्रेनिंग्स लोगों को दिलाई जाने की बात की जा रही है या फिर ट्रेनिंग्स दिलाते भी हैं यहाँ पर?
1: जी जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने युवाओं को बताना चाहूंगा कि हर जिले में एक आरसीटी की स्थापना की गई है।
0: जी
1: रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
0: जी
1: यह उस जिले की अग्रणी बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, हमारे टीकमगढ़ जिले में एसबीआई द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को ट्रेनिंग देना, उद्यमिता से जुड़ी हुई ट्रेनिंग देना।
0: जी
1: हमारे इच्छुक युवा, हमारे इच्छुक भाई बहन जो भी उद्यमिता संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वो एक आवेदन आरसीटी टीकमगढ़ में कर सकते हैं।

0: हैं तथा उनको अगले बैच में जब उनका जो ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी तो उन्हें सूचना दे के उनको बुला लिया जाएगा। तो ये हर ट्रेड वाइज हर उद्यम वाइज ट्रेनिंग रहती है जिसके दिन अलग अलग रहते हैं, तो जो भी युवा इच्छुक है उनको हम ट्रेनिंग शासन की तरफ से मुहैया कराते हैं।
1: सर कितने दिन की इसमें ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं?
0: ये ट्रेड के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि किसी को 15 दिन की ट्रेड रहती है तो उसका 15 दिन का रहता है, 20 दिन का रहता है, किसी का 1 महीने का रहता है, किसी का 5 दिन का भी रहता है, तो ट्रेड के ऊपर निर्भर रहता है
1: जी।
0: कि आपको कितने दिन की ट्रेनिंग दी
1: है। सर प्रशिक्षण के बाद यदि उसको प्रमाण पत्र मिलता है तो क्या बैंकों में उसकी जैसे हम सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ उस प्रशिक्षण वाले प्रमाण पत्र को, तो उसमें कुछ सहूलियत होती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो प्लस पॉइंट हमेशा आवेदक को मिलता है, वो ये वो जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो वो यह दर्शाता है कि उसके पास एक अन्य लोगों से विशिष्ट उपलब्धि है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उस क्षेत्र का जो भी अनुभव है वो ट्रेनिंग में उसने लिया गया है
1: जी।
0: तो मेरे अनुसार बैंक उसको अधिक कंसीडर करती है, उस पर अधिक विचार करती है और उसको जरूरी लाभ मिलता है
1: जी। अभी वर्तमान में सर उद्योग विभाग की ओर से कौन कौन योजना संचालित की जा रही है?
0: जी वर्तमान समय में उद्योग विभाग में 4 योजना संचालित की जा रही है रोजगार मेला, जिसमें 3 मध्य प्रदेश शासन की योजना है और 1 केंद्र शासन की योजना है
1: जी।
0: सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है
1: जी।
0: हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
1: जी,
0: युवा उद्यम योजना
1: जी,
0: और किसान पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यम योजना संचालित है
1: जी।
0: मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात की जाए तो इसमें 50,000 से लेके 10 लाख तक का ऋण सेवा उद्योग तथा व्यवसाय तीनों श्रेणी के लिए लिया जा सकता है
1: जी जी जी।
0: जबकि युवा उद्यमी की बात की जाए तो ये 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक की योजना है, इसमें केवल सेवा और उद्योग की इकाइयों के लिए ही ऋण लिया जा सकता है
1: जी जी,
0: व्यवसाय शामिल नहीं है
1: जी।
0: और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से लेके 2 करोड़ तक है, इसमें सेवा व्यवसाय तथा उद्योग तीनों प्रकार की इकाइयां स्थापित की जा सकती
1: है। अच्छा अच्छा अच्छा, केंद्र सरकार की सर कौन सी योजना?
0: केंद्र सरकार की योजना भी हमारे यहाँ संचालित है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
1: सृजन कार्यक्रम।
0: ये योजना 50,000 से लेकर 25 लाख तक है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, और इसमें सेवा तथा उद्योग की इकाइयों को ही कई स्थापना की जा सकती है, इसमें व्यवसाय आपात श्रेणी में है।
1: चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे युवा साथियों को एक मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि उद्यमता के क्षेत्र में लोग अपने एक तरीके से विचार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं और बहुत ही कम रोजगार हो गए हैं, तो लोग अब उद्यमता की ओर रुख कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद सर आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

अपना रेडियो अपनी बात है, एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, हमारे हितेश धाकड़ जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक सफल उद्यमी बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए जिससे वो सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, अपने व्यवसाय में सफल हों। साथियों, आप जानते हैं कि क्या बातें हैं सबसे जरूरी कार्य में आनंद करने के लिए, ये एक गुण होता है जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकता है। दूसरा कि गंभीरता, आप तब तक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका उसमें अटूट विश्वास ना हो। ये एक दूसरा गुण होता है जो आपको सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। तीसरा साथियों, आत्मविश्वास की कमी, जो कि हितेश जी ने बताया था कि आत्मविश्वास आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास किसी भी नए उद्यमी के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। चौथा साथियों, योजना आपको बनानी चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय लगाना है, कैसे लगाना है। पूर्ण योजना के साथ यदि हम व्यवसाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। अगली जो साथियों आपको सफल उद्यमी बनाने का गुण हम आपको बताते हैं, अगली जो गुण होना चाहिए हमारे युवा साथियों को जो सफल उद्यमी बनने के लिए, वो होना चाहिए खतरे उठाने वाला होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोखिम आएंगे आपको, यदि आप उद्यम डालते हैं तो आपको सबसे पहले मार्केट बनाना होता है, और इसके बाद मार्केट के साथ साथ बहुत सारी समस्या जो रहती है वो सामने आती है। तो ऐसे में खतरे उठाने वाला होना चाहिए, सब तभी एक सफल उद्यमी वो बन सकता है। विशेषज्ञता रखने वाला होना चाहिए, यानी हर विषय में उसको जानकारी होना चाहिए। संबंध जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी विशेषज्ञता आपके पास होना चाहिए। खुद में निवेश करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण आपके अंदर हो तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम में हम एक विराम लेते हैं, यानी लोकगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। इसके बाद साथियों आपकी हमारी बातचीत होगी और आपको हम विमल जी के पास ले चलते हैं, और विमल जी चूंकि विषय विशेषज्ञ हैं उद्यमता को लेकर, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हमारे युवा साथी यदि कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं तो सफल बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, कैसे सफल हमारा व्यवसायी बन सकता है हमारा युवा साथी। तो आइए इस प्यारे से लोकगीत को हम सुन लेते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने हरप्रसाद कुशवाहा और उनकी साथियों में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उनकी बातचीत को हम सुनते हैं विमल जी के साथ।

0: ऐसे में हम क्या करें कि अपनी आय को बढ़ाएं या एक रेगुलर आय हमारे पास में एक आती रहे जिससे कि हम कर सकें। तो उसका ये कि हमें कृषि के अलावा भी अन्य वैकल्पिक साधनों को खोजने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो हम अपने क्षेत्र में क्या चीज ऐसी करें, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा उद्योग लगाएं जिसमें बहुत कम पूंजी में कुछ उद्योग लगा करके कुछ ऐसा काम करके हम जो है वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में किन चीजों की खपत है, उन खपत के अनुरूप ही हमको उद्यम लगाने की जो है वो आवश्यकता है। अगर हमारे यहाँ पर तेल तिलहन अधिक हो रहा है तो हम तेल का कुछ लगा लें, अगर हमारे यहाँ मसाले अधिक है तो मसाले की चीज लगा लें। तो कैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई आंवला जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आंवले के अचार का लिए हम एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं। कई प्रकार के उत्पाद जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, हमको बहुत छोटी सी कोई हम महीने भर की ट्रेनिंग या दो तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर के और किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक हम बना सकते हैं और छोटा छोटा उद्योग लगाएं, ये भी अगर हम प्रयास करें तो हम अपने आय के साधन में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। आप सर बहुत बहुत धन्यवाद, साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
0: धन्यवाद।
1: अपना रेडियो अपनी बातें, आप हैं इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आजीविका को। और साथियों अभी आपने बिमल जी

से इतनी अच्छी जानकारी को जाना समझा और हमें तो लगता है कि अब हमें स्वयं का व्यवसाय करने में कुछ देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सारे गुण हैं अच्छे उद्यमी बनने के लिए, तो आप तुरंत उद्यम स्थापित आपको करना चाहिए और उद्यमिता में आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में सफल होने के लिए उसके एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना होता है, परंतु एक उद्यमी की सफलता में सीधे तौर पर व्यवसाय से जुड़े पक्षों के अलावा कई ऐसे पक्ष भी जुड़े जाते हैं जिन्हें उसे काम शुरू करने से पहले और काम करते समय लगातार अभ्यास में लाना पड़ता है। क्या होती है एक सफल उद्यमी की विशेषता, आइए आपको हम थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि हमारे विषय विशेषज्ञ और साथ में उद्योग विभाग के उपनिरीक्षण ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमने भी आपको बीच बीच में बताया कि हमारे युवा साथी किस तरीके से एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों, उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। वह ग्राहकों को तैयार करता है और ग्राहक रोजगार और आर्थिक विकास को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उद्यमी की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल विकास के एक पल्ले पर अगर रचनात्मकता और विचार, खोज और नवीनीकरण देखते हैं, तो दूसरे पल्ले पर आर्थिक और व्यापारिक पक्ष नजर आता है। इन दोनों पर्णों को यदि हम अपनी अनोखी सोच से साधने वाले व्यक्ति ही एक सफल उद्यमी कहलाते हैं। कहा जाता है कि क्या सचमुच एक सफल उद्यमी पैदा नहीं होते हैं? इस सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि एक सफल उद्यमी में कुछ प्रतिशत जन्मजात प्रतिभा होती है और बाकी वह सीख सकता है। यह भी कहा जाता है कि उद्यमी एक घोड़े की तरह होता है जो नवीन विचारों की गाड़ी को खींचता है, और उसका मतलब एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में एक साथ कई गुण बहुत जरूरी रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और अन्य वह काम और अनुभव के साथ साथ चमका सकता है। व्यवसाय विशेषज्ञों का यही कहना है कि सफल उद्यमी किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं और वह समाज के किसी भी घड़े में आ सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा उसको अंदर होनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग तरह के वो हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई स्थानों पर उद्यमी के लिए उच्च शिक्षा ज्यादा काम आती है, लेकिन अपने काम को बुनियादी जानकारी जरूर काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के उद्यमी ही साबित हों। प्रथम श्रेणी से मतलब ऊंचा लक्ष्य रखने वाला और हर समय काम करता हुआ दिखने वाला श्रेणी के छात्री सफल उद्यमी साबित होते हैं, ये कहा जाता है। तो साथियों, आप भी एक सफल उद्यमी बनिएगा और अपने व्यवसाय को आगे ले जाइएगा। कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आप अपने व्यवसाय की ओर मुड़िएगा। इसी के साथ साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम सुनकर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप जरूर पूछिएगा। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर है हमारा 9919207749। व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें क्या जुड़ना चाहिए ये भी आप जोड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। दोस्तों, हमारा नंबर है 9919207749। यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिएगा। पता है हमारा, रेडियो बुंदेलखंड है 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। तो साथियों, अगले कार्यक्रम में किसी नए व्यवसाय, किसी नए सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी मनीष को दीजिए जाने की इजाजत और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत आजीविका से जुड़ा। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार। इस कार्यक्रम को साथियों हम बहुत दिन से चले आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे श्रोता साथी सबसे पहले जब ग्राम विकास की बात आतेगी तो ग्राम विकास में सबसे ज्यादा सरपंचन को अहम भूमिका रहते हैगी, आपको भी पता है और सब साथियों को हमारे पता भी है। और तो और साथियों अभी से अपन को ग्राम पंचायत जब से गठित हो गई हैगी अपन को क्या करने हैंगे।

सरपंचन के संगे मिलके अपने ग्राम विकास को खाका तैयार करने है को संगे संगे जो नियमावली हैगी वह नियमावली के अनुसार अपन को काम करने हैं। सबसे पहले एजेंडा तैयार करने कि हमारे ग्राम पंचायत में कौन कौन से ऐसे काम रह गए हैंगे जो पंचायत करात हैंगे और जिनकी मूलभूत आवश्यकता हैगी। तो सबसे पहले अपन हो जैसे बरसात को मौसम चल रहा है गो बरसात के मौसम में सबसे पहले जब बैठक हुई हैगी तो बैठक में अहम चर्चा अपन हो का करने है गो के सबसे पहले अपन हो एजेंडा तैयार करने खेती किसानी को कि खेती किसानी में हमारे किसान साथी कैसे काम कर सकते हैं पानी को कैसे संरक्षित कर सकते हैं बरसात के पानी को कैसे रोक सकते हैं मेड़ बंधन कौन तरीके से करा सकते हैं तालाब गहरीकरण कौन तरीके से हो सकते है गो संगे संगे अपने पेयजल की का व्यवस्था है सड़क की का व्यवस्था हैगी शिक्षा की का व्यवस्था हैगी रोजगार में जब अपन रोजगार की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत में मनरेगा में बहुत सारा काम आते है गो तो बाकी का व्यवस्था है। तो ये सारे चीजें अपन को लिख के वैसे तैयार करके रखने आगामी ग्राम सभा जब भी हुई है तभी अपन को ये एजेंडा जो आपने तैयार करो ये रूपरेखा आपने जो तैयार करी ग्राम पंचायत में लेके जाने हैंगे और सरपंचन के संगे जो बैठक होते हैगी ग्राम सभा की बैठकें होते हैंगी उनको जाके अपन को बताना है कि जे जे मूलभूत आवश्यकता है आप अपन को ग्राम विकास पे अपन को काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हैगी। तो ये मूलभूत चीजें हैं जो अपन को सोचने हैं समझने हैगी। दूसरी बात आते हैगी कि स्वयं सहायता समूह हर ग्राम पंचायत में बन रहेंगे तो ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह की काब भूमिका रत है ग्राम पंचायतों में वह विषय पर आज अपन बतकाव कर बेबारे हैंगे। छोटी छोटी बातें अपन ध्यान में रखे हैं कि कैसे बहुत ज्यादा आवश्यकता रत है खासतौर पर स्वयं सहायता समूह जो काम करत हैंगे मिलके जब काम करत हैंगे तो बहुत अच्छा लगत है आनंदित होते हैं बहुत सारी चीजें निकल के आते हैं तो वो विषय पर अपन बतकाव करवे जा रहे हैं लेकिन अपनी बातचीत काफी हो चुकी है तो अपन कहना अपन इतने 900 लोग गीत को सुन लेते हैं और गीत के बाद अपन आज हम जाने कि ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह की भूमिका खासतौर पर ग्राम पंचायतों में भूमिका स्वयं सहायता समूह की स्वयं सहायता समूह की का भूमिका रत हैगी जहाँ पे भी एक प्रकाश डाले हैंगे का पात्रता ग्रामीण युवक और जो गरीब हैंगे उनको का सहयोग मिलना चाहिए विशेष समूह जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं घटक कार मापदंड का रथ है उन विषय पर अपन चर्चा करेंगे लेकिन जैसे पहले अपन सुनते हैं जो 900 गीत को बने रहो आपके आरजे मनीष के साथ सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बात है।

अपना रेडियो अपनी बातें। अभी आप सुन रहे थे उत्तम सिंह यादव और उनके साथियों के आवाज में एक प्यारे से गीत को। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ात भाई अपन जानत हैं कि ग्राम पंचायत में खास तौर पर स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका रत हैगी, बाबे साहब पर अपन बातचीत कर रहे हैं। आपको पता होनी चाहिए कि आजीविका कौशल के सफल क्रियान्वयन में विशेष कर अपने अधिकार के क्षेत्र में अत्यंत निर्धन परिवार को लाभ पहुंचाने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि आजीविका कौशल में कौशल विकास के

ग्रामीण सैचुरेशन अप्रोच अपनाई गई, जाकी लाने कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने, जानकारी प्रदान करने के प्रयासों में मदद करने, कौशल विकास की मांग और नियोजन के लिए डाटाबेस तैयार करने, जॉब मेला के आयोजन में मदद करने तथा क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर पीआरए की सहायता करने में ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाते है। ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि महिलाएं अधिक अत्यंत कमजोर वर्ग कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शामिल हैं, उन्हें संभावित उम्मीदवारों और संभावित उम्मीदवारों के अभिभावकों के साथ एक विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित करना होगा और कार्यक्रम की संभावनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी। जब पीआईए कौशल विकास का प्रशिक्षण देती है तब ग्राम पंचायतें विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट प्राप्त करके तथा प्रशिक्षण पाने वाले उम्मीदवार के साथ सीधी बातचीत करके क्रियान्वयन पर नजर रख सकती है। ग्राम पंचायतों का क्रियान्वयन संबंधित मुद्दे जिला और राज्य मिशन के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ग्राम पंचायतें प्रशिक्षण के पश्चात उम्मीदवारों के लिए को दिए गए काम पर नजर रख सकती है। काम के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करने के लिए उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों के साथ बातचीत कर सकती है। शिकायत निवारण के हिस्से के रूप में कार्य कर सकती है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका जो रहती है वो आजीविका कौशल में कौशल विकास के माध्यम से निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है इसमें, और निर्धनों की संस्थाओं की क्षमताओं का इस्तेमाल करके नियोजन का लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। निर्धनों की संस्था HSG यानी स्वयं सहायता समूह, उनके संघ और तथा आजीविका क्रियाकलाप निर्धनों को स्वयं सहायता पर आधारित सामूहिक क्रियाकलापों तथा पारस्परिक सहयोग के लिए मंच मुहैया कराती है। लक्ष्य में रखे हुए लाभार्थियों को एकजुट करने, कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने, लाभार्थियों को निर्धारण में सहायता करने का निर्धारित युवकों के अभिभावकों हेतु काउंसलिंग सत्रों का आयोजन में मदद करने, पीआईए द्वारा क्रियान्वयन की निगरानी करने आदि सहित विभिन्न क्रियाकलापों में इन संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार पीआईए को अपनी परियोजना का क्रियान्वयन की कार्य नीति तैयार करने में एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह की भूमिका को ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यानी जरूरत है। अब बात आती है पात्रता। ग्रामीण युवक जो गरीब हैं, 18 से 35 वर्ष की आयु के निर्धन ग्रामीण युवक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूह हैं। विकलांग व्यक्तियों तथा विशेषकर अपेक्षित जनजाति समूह यानी PTG के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष इसमें रखी गई है। विशेष समूह जिनमें विकलांग व्यक्ति, अवैध व्यापार में पीड़ित व्यक्ति, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति, किन्नर, पुनर्वास किए गए बंधुआ जो मजदूर है को 16 वर्ष से अधिक की आयु में भी नामांकन की अनुमति दी जा सकती है, वशर्ते कि वे जॉब संबंधित प्रशिक्षण सहित अन्य प्रशिक्षण का कार्य पूरा होने तक 18 वर्ष के हो जाएं। निर्धनों का भागीदारी पूर्ण निर्धारण नामक प्रक्रिया के जरिए निर्धनों का निर्धारण किया जाएगा। यह प्रक्रिया NRLM कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा PIP के लिए अधिसूचित किए गए प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा। इस संभावना व्यक्त की जाएगी कि PIP से लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्ष्यबद्ध करने में मदद इसमें मिलेगी। जब तक PIP के उपयोग से निर्धनों का निर्धारण किया जाता है तब तक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूह के निर्धारण में BPL परिवारों की मौजूदा सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। उपयुक्त के अलावा

से युवक जो विगत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मनरेगा कार्यस्थलों पर काम से कम 35 दिनों तक श्रमिक के रूप में कार्य कर चुके हैं, बीपीएल सूची में ना होने के बावजूद इसके लिए पात्र होंगे। ऐसी आशा जताई गई है कि पीआईपी के दौरान उनका निर्धारण कर लिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर विशेष बल, राष्ट्रीय स्तर पर 50% निधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की जाएगी। इनके बीच निधियों के अनुपात का निर्धारण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर किया जाएगा। इसके अलावा 15% निधियां जो अल्पसंख्यक समूहों के लाभार्थियों के लिए अलग से रखी जाएगी। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 3% लाभार्थी अल्पसंख्यक समूहों में से हो। कवर किए गए व्यक्तियों में से 1/3 लाभार्थी महिला होनी चाहिए। यह निर्धारण केवल न्यूनतम है। यद्यपि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों में से किसी भी श्रेणी में कोई पात्र लाभार्थी नहीं है और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इसे प्रमाणित कर देती है, तब उनके लक्ष्यों को अन्य श्रेणी के लक्ष्यों में बदला जा सकता है। विकलांगों व्यक्तियों के मामले में अलग से परियोजना प्रस्तुत की जाएगी। इस परियोजना के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र होंगे। इनकी इकाई लागत इन दिशा निर्देशों में उल्लेखनीय इकाई लागतों में से अलग होगी। विशेष समूह जो होते हैं उसकी भी एक गाइडलाइन तैयार है। यदि भी विकलांग व्यक्तियों की अवैध व्यापार से पीड़ित व्यक्तियों, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों, किन्नरों, पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों जैसे विशेष समूह तथा अन्य कमजोर समूहों के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी राज्यों को ऐसे विशेष समूह जो अक्सर छूट जाते हैं तो ऐसे को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष कार्यनीति बनानी पड़ती है। इन समूहों की चुनौतियों से निपटने तथा भागीदारी में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्य के स्वरूप को राज्यों द्वारा प्रस्तावित कौशल कार्य योजना में समाविष्ट किए जाने की जरूरत है। मूक बधिर, चलने में अक्षम, दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में संभावित नियोजकताओं को संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें काम पर रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके। विकलांग व्यक्तियों की नियोजन पर जुड़े प्रशिक्षण संबंधित नोट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर वेबसाइट है, वहाँ पर उपलब्ध है नोट पूरे http://nrlmskill.in पर उपलब्ध है। यहाँ पर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर घटक और मापदंड की बात करें तो आजीविका कौशल क्रियाकलापों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप और दूसरा है PIA द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप। अब आता है SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, उनके लागत मापदंड। इस खंड में SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची, उनके लिए लागत मापदंड के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह राज्य नोडल एजेंसी पर भी लागू होगा जिन्हें राज्य आजीविका कौशल क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है। कौशल में कमी का आकलन SGA का उद्देश्य कौशल और नियोजन के लिए ग्राम पंचायत बार मांग का पता लगाना, नियोजन हेतु विभिन्न कौशल श्रेणी में प्रतिभावना उम्मीदवार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। हालांकि 10 वर्षों में किए जाने वाली जनगणना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कराई गए अध्ययनों से प्राप्त आंकड़े प्रारंभिक बिंदुओं हो सकते हैं, फिर भी SRLM को खुद या पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से ग्राम पंचायत वार विस्तार आंकलन कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप इससे जुड़िएगा और आपको लगता है कि SRLM या NRLM जो मध्य प्रदेश में चलता है उनसे जुड़कर विशेष तौर पर ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। साथियों, हमें आशा है कि इसका दूसरा भाग हम अगले कार्यक्रम में जरूर आपके पास लेकर आएंगे।
कोशिश करेंगे, चूंकि हमारे चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं, तो ऐसे में कुछ समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। किस तरीके से आपका नया सरपंच किस तरीके से काम करने में सक्षम है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसे इस पर गौर फरमाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

आप आगे देखें, कहने लगी वो आत्मा, रहती अनुपल तो उस पर भी ना थी उजल। मैं अनपढ़ भी बनी रहती तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा तो रहने देते।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाते, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए हम तमाम प्रकार की रोजगार सूचनाएं हो या उनकी करियर संबंधी जानकारी हो उस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने श्रोता साथियों तक पहुँचाते रहते हैं। आज चूंकि आज एक बहुत बड़ा विशेष दिन है और आज के हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज चूंकि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, चूंकि हर कोई रोजमर्रा की जिंदगी में यथासंभव स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता को महत्व देता है, मरीज और फिटनेस के शौकीन आमतौर पर

चोट, बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के कारण होने वाली गति संबंधी विकारों से जुड़ी शारीरिक अक्षमताओं के लिए फिजियोथेरेपी सेवाओं की तलाश करते हैं जो उनके लिए जरूरी या महत्वपूर्ण किसी भी गतिविधि को करने या करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। स्वास्थ्य सेवा द्वारा अपनाई जाने वाली अनेक प्रतिक्रियाओं में से चिकित्सीय व्यायाम एक प्रमुख तत्व के रूप में अपना स्थान रखता है, जो किसी व्यक्ति के कार्य को सुधारने या बहाल करने या शिथिलता को रोकने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को केंद्र में होता है, जैसे कि संतुलन में सुधार, समन्वय विकसित करना, प्रगतिशील लचीलापन, गतिशीलता में सुधार, मांसपेशियों का प्रदर्शन और तमाम प्रकार की, चूंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, वो डॉक्टर ही बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें मिल गए हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी। आज आप किसी परिचय के मोहताज, नाम आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, हमारे मित्र हैं मनोज द्विवेदी जी। आप चिरंजीव हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सारे मरीजों को उन्होंने सही भी किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से बताते भी रहते हैं। तो खास बातचीत में आप सुनिएगा कितनी महत्वपूर्ण रहता है ये फिजियोथेरेपी हमारे स्वास्थ्य के लिए। चलिए डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं।

0: सबसे पहले मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को। मुझे बड़ी खुशी है रेडियो बुंदेलखंड के मंच पर आने पर, और चूंकि ये चैनल मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता और जानकारी भी प्रदान करता है, तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मनोज जी, हम जानना चाहेंगे कि चूंकि विश्व थेरेपी दिवस, चूंकि एक अलग लोगों को समझ में भी नहीं आता, खासतौर पर अगर ग्रामीण परिवेश में अगर देखा जाए, जोड़ा जाए इसको, तो इसकी शुरुआत, इतिहास किस तरीके का रहा है, थोड़ा हमारे साथ बताइएगा।
1: देखिए, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में यूरोप से शुरू हुई जी। और जैसे कि वर्ल्ड वार टू, और इस दौरान बहुत सारी कैजुअल्टी और बहुत सारी इंजरीज हुई, तो उस दौरान विकलांगता या जो इंजरीज के दौरान चलने उठने बैठने में असमर्थता आई, तो उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल या भूमिका अहम होती चली गई, वहां से ये विकसित होता चला गया। दूसरी बात कि भारत में स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इसका समावेश होता चला गया, और आज ये किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत अहम भूमिका प्रदान कर रही है
0: जी। मनोज जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि जो फिजियोथेरेपी, और खासतौर पर आप स्पेशलिस्ट भी हैं, आप इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं, किस तरीके की मरीज यहाँ को देखने को मिला है आपको, किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, और खासतौर पर ये इलाज किस तरीके से लोगों को एक रामबाण साबित होता दिखाई दे रहा है?
1: देखिए, मैं करीब करीब बुंदेलखंड क्षेत्र में 15 साल से फिजियोथेरेपी की सेवाएं दे रहा हूँ। खासकर अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ, तो बहुत सारे हमारे ग्रामीण भाई बहन अपने खेतों में काम करते समय या अपने गांव देहात में मजदूरी करते समय बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं। जैसे खेतों में काम करते समय कमर की तकलीफ होना, या लंबे समय तक झुके रहने की वजह से गर्दन में समस्या होना, या बुवाई के समय खासकर जो है किसान भाई जो है हमारे, तो उनको घुटनों में दर्द होना, तो इस तरह की समस्याएं लेकर जब हमारे पास आते हैं, तो उसमें बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनका फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया जाता है।
0: सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे हमारे साथी, फिजियोथेरेपी और नॉर्मल जो इलाज कराते हैं, क्या अंतर दिखाई देता है और क्या लोगों को समस्याएं आती हैं?
1: देखिए, आज के समय में बहुत सारे जो हमारे जागरूक भाई बहन हैं, तो उनका ये मानना रहता है कि अगर बिना दवाई या बिना जो है ऑपरेशन के, क्या कोई ऐसी पद्धति या चिकित्सा विधि है जिसके माध्यम से हम

0: ठीक हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि बहुत सारी परेशानियां जैसे कि मांसपेशियों का दर्द हो गया या जोड़ों का दर्द हो गया या नसों का दर्द हो गया या कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे कि लकवा हो जाना या किसी अंग का काम नहीं करना, तो ऐसी समस्याओं में भी हम एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी या व्यायाम या कुछ मशीनों के योगदान या सिकाई से भी उसमें लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ये पद्धति चिकित्सा क्षेत्र की ही है, तो कई बार बीमारियों में मेडिसिन के साथ साथ या दवाइयों के साथ साथ भी फिजियोथेरेपी का योगदान रहता है
1: जी। और खास तौर पर सर देखा जाता है, अगर ग्रामीण अंचल की बात करें तो देखा जाता है कि लोग अगर कुछ भी समस्या आती है, खासतौर पर अगर उनको पैरों में दर्द हुआ या फिर चेस्ट पेन हुआ, इस तरीके का कोई भी समस्या आती है, पेन किलर जो रहती है, दर्द निवारक गोलियां जो रहती हैं, खासतौर पर वो खा के उसका निदान कर लेते हैं। आपको क्या लगता है इससे लोगों के शरीर में जो नुकसान दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर आज जो विकट समस्याएं सुनने को और देखने को मिल रही है, कैंसर जैसी समस्याएं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी दवाइयां और रोज रोज दवाइयां खाने से हमारे शरीर में बहुत सारा नुकसान होता है, क्या कहना चाहेंगे
0: मनीष जी? ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल उठाया है और इसका मुझे लगता है कि हमारे हर भाई बहन को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, हर छोटी समस्या के लिए तुरंत पेन किलर ले लेना या दर्द निवारक दवाई का सेवन करना उचित नहीं है, जब तक कि वो बहुत ज्यादा विकट समस्या का रूप ना ले ले। मैं कहूंगा कि छोटे या छोटे मोटे शारीरिक कष्ट के लिए आपको दर्द निवारक दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते भी हैं तो आपको डॉक्टर की उचित सलाह के बाद लेना चाहिए। रही बात छोटे दर्द वगैरह के लिए या छोटी मोटी दिनचर्या में जो आप कष्ट लेते हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए छोटे मोटे व्यायाम, अपनी दिनचर्या में बदलाव और सही पोषण के माध्यम से आप उसको ठीक किया जा सकता है
1: जी। लेकिन यहाँ पर तो समस्या यही आती है कि लोगों को, चूंकि ऐसा माना जाता है, चूंकि मैं जाना स्पेशलिस्ट नहीं हूं उस चीज में, लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी से और जो हम लोग नॉर्मल दवाइयां लेते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, फिजियोथेरेपी कराने में थोड़ा समय लगता है, जो कष्ट रहता है उनको, जो दर्द रहता है वो फिजियोथेरेपी से क्या धीरे धीरे जाता है, ऐसा लोग मानते हैं, आपका क्या मानना है कि ये क्या चीज मतलब?
0: देखिए, मैं कहूंगा कि फिजियोथेरेपी भी लाभ देती है और दवाइयां या और जो पद्धति है वो भी लाभ देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि जैसे आर्थराइटिस है या गठिया हम कहते हैं, तो गठिया में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सूजन बढ़ रही है या किसी जोड़ के बीच में इन्फ्लामेशन या संक्रमण फैल रहा है, तो उसमें योगदान रहेगा मेडिसिन का या दवाइयों का जो उस संक्रमण को रोकने का काम करेगी। लेकिन अगर उस जोड़ में संक्रमण के साथ साथ मांसपेशियां भी कमजोर हो रही है या स्नायु टाइट जकड़ रहे हैं या टाइट हो रहे हैं, तो उस कमजोरी को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी का योगदान लिया सकता है और उस संक्रमण को कम करने के लिए दवाइयों का योगदान लिया सकता है। तो दोनों का ही सम्मिलित रूप मरीज को और बेहतर तरीके से ठीक कर सकता है।
1: ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इसमें जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ देर बाद आएगा, कुछ दिनों बाद आएगा, ऐसा लोग कहते हैं?
0: ये बिल्कुल सही कहना है मनीष जी आपका जी। है क्या कि फिजियोथेरेपी जब हम प्रारंभ करते हैं किसी समस्या को लेकर के, तो हमें उस उन मांसपेशियों को या उस जोड़ को पूरी तरह से ठीक करने में या सामान्य लाने में एक समय लगता है। हो सकता है कि यह समय कुछ दिनों से लेकर के महीनों तक में लग जाए, क्योंकि जितनी पुरानी समस्या होगी उसको ठीक होने में भी उतना समय लगेगा, जितनी गंभीर समस्या होगी उसके उपचार में भी उतना ज्यादा समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी थोड़ा सा टाइम ले सकती है पूरी तरह से ठीक होने में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, खासतौर पर जब हम समुदाय के पास जाते हैं तो एक बहुत बड़ी विकट समस्या देखने को और सुनने को मिल रही है कि खासतौर पर महिलाओं और पुरुषों के घुटनों में ये दर्द होता है, क्या मानना है, किस कारण से होता है, क्या खान पीन से होता है, खान पान से होता है, क्या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे होता है, क्या लगता है किस तरीके से आजकल ये जो समस्याएं देखने को मिलती और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती चली जा रही है, इस इलाज इसको फिजियोथेरेपी

0: एचपी में किस तरीके से कर सकते हैं?
1: मनीष जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि हम युवा अवस्था में हैं
0: जी,
1: तो उस दौरान बहुत सारे जो है खेल कूद के दौरान या हमारे कुछ क्रियाकलाप के दौरान चोटें लग जाती हैं
0: जी।
1: उन चोटों की वजह से हो सकता है उस युवा अवस्था में, चूंकि हम अभी यंग है, हमारी मांसपेशियां मजबूत है, हमारे जोड़ मजबूत है, तो ये समस्याएं हो सकता है उस समय या उस अवस्था में कम महसूस हो, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो जो पुरानी चोटें हैं ये उभर के आने लगती हैं या हमारे जोड़ को बहुत जल्दी जो है संक्रमित करना शुरू कर देती हैं। तो एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि अगर हमारा खान पीन अच्छा नहीं है, हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वो बहुत हमारी फिजिकल एक्टिविटी या हमारे शारीरिक व्यायाम से संबंधित कह लीजिए वो कम है, तो हमारी मांसपेशियां कम जोड़ रहेंगे जो उम्र के साथ हमारे जोड़ों को प्रभावित करेंगे। दूसरा, अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे गठिया हो गया, डायबिटीज हो गया या और भी तमाम तरह की समस्याएं हैं, वो भी इन जोड़ों को बहुत जल्दी प्रभावित करती है। अगला कारण ये हो गया कि अगर हमारी जलवायु में, खासकर जो है ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि अब बहुत ज्यादा क्लाइमेट परिवर्तन की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है या सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो वह भी हमारे जोड़ों को प्रभावित करती है जिनसे ये समस्याएं होना शुरू हो जाती है।
0: इसका निदान किस तरीके, क्योंकि फिजियोथेरेपी आप काफी सालों से इस पर काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल की हैं और खासतौर पर आपने एक फोकस तरीके से इसको चीज को बिल्कुल बारीकी से लिया है। ग्रामीण अंचल की अगर बात करें तो ग्रामीण अंचल के लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं खासतौर पर इस फिजियोथेरेपी को लेकर?
1: देखिए, अगर आपको कुछ भी मांसपेशी संबंधित या जोड़ों से संबंधित समस्या होती है तो हमारा ये मानना रहता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा आराम मिल जाता है उस तकलीफ में, फिर हम काम में लग जाते हैं। तो मैं कहूंगा ये पद्धति ना अपनाएं। अगर आपको समस्या लंबे समय से है या वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो मैं कहूंगा कि अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लें और उनका मार्गदर्शन लेकर के उन चीजों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, जिससे आप समस्या से बच सकते हैं और समस्या से निदान भी पा सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात की है। और साथियों, हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण बदल रहा है और खास तौर पर यह आज हम जो बीमारियां सुनने की और देखने को मिल रही हैं, बहुत चिंताजनक बात है। हमें इसको समझना होगा, खासतौर पर ग्रामीण अंचल में इस बात पर हमें विचार करने की जरूरत है कि हमें कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी के ओर रुख करना होगा और यही इलाज है, क्योंकि आजकल ये जो बीमारियां सुनने को मिल रही हैं उसका सिर्फ एक ही इलाज है। किस तरीके से हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम इसका निदान पा सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले चरण में फिर से मिलेंगे, अगले भाग में जरूर मिलेंगे। कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं इस पर हम जरूर बात करेंगे। बने रहिए आपके दोस्त मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 FM।
1: नमस्कार।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और ये विशेष कार्यक्रम है आज, चूंकि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, बड़े धूमधाम से, चूंकि डॉक्टरी लाइन में से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, अपना एक महत्व भी रहता है। और खास बातचीत हमारे डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी से आपने सुनी है, कितनी महत्वपूर्ण रहती है। और मतलब ये कहेंगे कि बुंदेलखंड का सबसे बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर तमाम प्रकार के एक्सरसाइज के माध्यम से और बहुत सारी आधुनिक मशीनों द्वारा यहाँ पर तमाम प्रकार के लोगों को, मांसपेशियों में जिनको खिंचाव है या पर किसी को लकवा मार गया है, तो एक एक्सरसाइज के माध्यम से किस तरीके से वो लोगों को राहत दे रहे हैं, बड़ा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी को, जिन्होंने ये प्रयास किया है, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक वरदान साबित हो रहा है चिरंजीव स्पोर्ट इंजरी सेंटर, जो कि हॉस्पिटल में है। डॉक्टर मनोज द्विवेदी, तो खास बातचीत आपने सुनी है, और भी हम तमाम प्रकार की बातचीत हम लेकर आएंगे। तो कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर हमारे इस पते पर आप

यहाँ भी लिख सकते हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा, और आपके रेडियो साथी मरीज लेते हैं जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और

अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, क्योंकि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है, उस पर भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी, हमारे जो जान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती डूबी हुई है, तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। चूंकि एक्सपर्ट आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो कल हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन आज इस विषय जो समसामयिक चर्चा भी है कि क्या इस मौसम में क्या देखभाल, क्या किसानों को सावधानी, किस तरीके तैयारी, क्या करना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आप करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को, लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और खेत खलियान कार्यक्रम में साथियों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूँकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपने खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब ज़रूरत से दो गुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70-80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं, तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको हम

0: दूसरी जगह मैन खेत में लगा सकते हैं।
1: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
0: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में, या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार, नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है। तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौध तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें। और जैसे ही हमको मौसम 1 या 2 दिन का खुला दिखे, और जैसे हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है, लंबाई वो 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है।
1: जी
0: तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
1: जी और रुपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रुपाई, चूंकि एक विधि रहती है रुपाई की, तो कौन सी ऐसी
0: जी
1: विधि
0: सर,
1: है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
0: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से। क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है, तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है वो एक लाइन मेथड में हम करें, चूंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उसमें क्या होता है, कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60 बाई 60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60 बाई 45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60 बाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको, और किस तरीके से बीज उपचार करना
0: जी
1: चाहिए?
0: सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली। क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीजन में खरपतवार की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, और चूंकि हमारे जो किसान भाई है ना, उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए अभी। यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उनकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में। तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम है, MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का। जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूप में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूप में, आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों को किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
0: जी सर बिल्कुल। अभी क्या होगा, जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा, अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे और भिंडी। अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर, और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा। तो ये क्या होता है, जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है। तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पे या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांट हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पे हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
1: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूंकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियां, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियां, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों
0: बिल्कुल
1: को?
0: सर, अभी क्या है, जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही, जिसको हम पीथियम पेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू, ये फैलता है। तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पे कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC, जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सॉल्यूशन, और साथ में ही हम मैनको जैप या M45 का 1% सॉल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
1: बहुत बढ़िया जानकारी। और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें?
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए, वो भी बरसात की वजह से। तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। तो इसको ध्यान

0: रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें और
1: हुँ।
0: हम अगेती फसलें जैसे
1: हुँ।
0: फूल गोभी के पत्ता गोभी
1: हुँ।
0: और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाते हैं, लगाए भी है, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
0: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो
1: जी
0: उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वेराइटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम बात करें अरका नाम का वेरायटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वेरायटी की, या काशी लालमा वेरायटी। ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वेरायटी भी हैं, जो चूंकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वेरायटी की अपेक्षा।
1: जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है उनकी?
0: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वेरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया, उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी, और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार का पता है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तेगला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल जल्दी आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से भजन को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम को जैसो नाम तैसो काम भी है। साथियों ये कार्यक्रम में अपन सुनते हैं एक विधाकों और विधाकों आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आज ही कार्यक्रम में अपन एक बढ़िया सी विधाकों सुने और विधाकों आनंद लें। बा विधा है विधा कहरवा। जब कहरवा लहरियां लेत है तो देखो कितना सुहाना लगत। आहा जा लगत के झूमन लगवे। बिल्कुल दोस्तों, तो आ दोस्तों यही क्रम में हम आपको एक बढ़िया सो कहरवा सुनाऊ थे और कहरवा को आनंद आप सब जने लो और हम भी ले। तो आ दोस्तों सुनते ही कहरवा को।

बिल्कुल दोस्तों, ईश्वर से प्रीत ना लगाई उम्र तूने बिरथा गमाई। देखो दोस्तों, कितना प्यारो जो कहरवा अपन सब जन ने सुनो है और ये कहरवा को आनंद लो है। और दोस्तों ये कहरवा को गा रहे थे भैया चंदन सिंह आरवान जी। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो आ दोस्तों, एक क्रम में अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ तो है, सुनते हैं एक और बढ़िया से कहरवा को।

उमरिया है बारी कैसे कटे हमारी। देखो दोस्तों, जो कितना प्यारो कहरवा अपन सब जन ने सुनोई कहरवा को आनंद लो है। और दोस्तों कहरवा को गा रहे थे भैया गजराज सिंह जी। अब दोस्तों गजराज सिंह जी के कहरवा के बाद फिर से अपन कार्यक्रम में सुनते हैं अगले साथियों के गायब है कहरवा को और उनके कहरवा को आनंद लेते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ही सुनते रहो जो कार्यक्रम अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों। हाँ, केवट खो ठाणे चिल्लाए रे रे जे अवध बिहारी। देखो दोस्तों, कितना प्यारा जो कहरवा अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लव है। और ये कहरवा को गा रहे थे भैया हरी राम जी। तो दोस्तों, हमें तो ऐसे लग रहा हो कि हरी राम जी के स्वर में एक और कहरवा को काय न सुन लो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आप फिर से सुनते हैं एक और हरी राम जी के स्वर में कहरवा को।

0: हाँ दोस्तों देखो कितनों बढ़िया जो कह रहे अपन सब जन ने सुनो है इको आनंद लो है कि रामा लखन चूरी गए रे हनुमत पहरेदार। देखो दोस्तों कितनी बड़ी बात है हनुमत पहरेदार। और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया हरी राम जी। अब दोस्तों हरी राम जी के ये गीत के बाद अपन सुनते हैं एक और बढ़िया सो कहरवा जी ये गा रहे हैं सालक राम पटेल जी। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
1: ज्ञान मारो

दोस्तों देखो कितना बढ़िया जो कहरवा अपन सब जन ने सुनो है कहरवा को आनंद लो के तिरछी नजरिया न मारो धना घूंघटा नेची खुंडारो। दोस्तों ये गीत खो गा रहे थे भैया सालक राम पटेल जी। अब साथियों एक ही संगे संगे हम आप सब जन हूँ बता देवे कि आज के कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दिन जी को जावे को समय हो गया है। सो अपने दोस्त को दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: मैं सुनो आप तब के वो तार दियो गगरी लाला दे होने का तुम्हारा के हमारी सुनो
1: के गगरी तोरी भौजी चबई उतर है गगरी तोरी भौजी चबई

बहू देखो जी केरे लड़का बिटिया तुम्हें राम ने दई है हम सबको आनंद भइए ऐसे तो केरे के गगरी उतार दिखाए

उसे हम दिखवा सके रे। जीता।

0: पांव के वो है, तुम कह रही के दो बेने हैं, हमें नेग में जोनो ही जाना है, मालूम का जाना
1: क्या जाना
0: क्या वो है। प्राणन से प्यारी भो जाई, ध्यान से सुनियो बात हमारी, ध्यान से सुनियो बात हमारी।

0: बिटिया हम भी सब खुश रहे और दोनों को लड़की शान बढ़ावे जो ही है एकदम से नेगे बिचाने और कछुरे जाने और
1: अरे खुशी रहे जानाज दुलारो कुल को है उजियारो
2: कह रहे
1: अरे खुशी रहे जो राज

बारी हमारे गांव की। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम बारी हमारे गांव की। दोस्तों बारी हमारे गांव की कार्यक्रम में अपन एक गांव की ओर चलते हैं और उ गांव की स्थिति को अपन जानते हैं कि ई गांव में का व्यवस्था बिजली की है, का व्यवस्था पानी की है, का व्यवस्था साफ सफाई की है और का व्यवस्था शिक्षा की है। सो दोस्तों जी सारी बातें अपन ई कार्यक्रम में करते हैं। अब दोस्तों यही बातन के संगे संगे आज अपन चले बरुआ सागर और बरुआ सागर में अपन मिले भैया मुन्ना लाल कुशवाहा जी से और उनसे जाने के बरुआ सागर में जो जिते जी रथ हैं बा मोहल्ला में का व्यवस्था पानी की है, का साफ सफाई की है और बा कौन सी व्यवस्था नन्या जो इनके दिल में खटक रही है। सो दोस्तों आओ जानते हैं इन भैया की बात अनखो। सो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दिन के संग में। सो भैया मुन्ना लाल जी से मिलवे से पहले आओ एक बढ़िया से गीत को सुन लेते हैं और गीत को आनंद लेते हैं।

0: बिल्कुल, जो तीन दिना को मेलारी रजे है हंस अकेला। देखो कितना प्यारो जो गीत अपन सब जनन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया राजकुमार त्यागी जी और अमूल्य अहिरवार जी। अब दोस्तों एक गीत के संगे संगे अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में चले थे अपन बरुआ सागर की ओर। और बरुआ सागर में अपन चले थे सिनोरा मोहल्ला में, जितने मिलत हैं अपन भैया मुन्ना लाल कुशवाहा जी से। सो दोस्तों आओ मिलते हैं भैया मुन्ना लाल कुशवाहा जी से और जानते हैं सिनोरा मोहल्ला की हालत को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दिन के संग में। अच्छा भैया पहला तो आप अपना नाम पता बताओ।
1: हमारा नाम भैया मुन्ना लाल कुशवाहा।
0: मुन्ना लाल कुशवाहा जी, अपन कौन से गांव के हैं?
1: बरुआ सागर सनोरा मोहल्ला किले के पास रहते हैं।
0: किले के पास रहते हैं,
1: सारंगी मास्टर
0: चलो
1: के नाम से हमें जाना जाता है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा यही क्रम में अपन बात करें अपने गांव के विकास की, ठीक है? तो अपने जो मोहल्ला है तो अपने मोहल्ला में बिजली की क्या व्यवस्था है अगर बात करें तो?
1: बिजली तो आजकल जो है कि जैसे वर्षा का समय चल रहा है तो कभी कभी जैसे फॉल्ट हो जाती है तो रात भर नहीं आती है।
0: अच्छा।
1: वैसे सरकार भी बढ़िया चल रही है, लाइट भी अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत भी नहीं है हमारी लाइट के लिए।
0: बहुत अच्छी बात है,
1: विकास तो बढ़िया हो रहा है हमारा, सौंक सफाई सब ये तो हर चीज से चल रहा है।
0: अच्छी बात है। एक क्रम में अपन बात करें पानी की व्यवस्था की, तो आपके तो मोहल्ला में क्या व्यवस्था है पानी की?
1: पानी के लिए हम लोगों की व्यवस्था भैया हैडपम्प लगाए हैं।
0: अच्छा, हैडपम्प लगे?
1: हैडपम्प लगे हैं, नजदीक ही नजदीक हैडपम्प लगे, दो दो इकट्ठे लगे।
0: हाँ।
1: और खराब हो जाते हैं तो हमारे मेंबर लोग जो है कि उसको ठीक करवाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: अगर कोई बात नहीं करवा पा रहे तो हम लोग भी आपस में पैसे जोड़ लेते हैं, अपने ठीक करवा लेते हैं।
0: और कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। काहे कि कछु आदमी जो देखो जात के सरकारी संपत्ति को जो देखत के बाकुन अपनी
1: है। नहीं अपनी ही है वो
0: है?
1: अपनी खुद की है।
0: सोचने हाँ, थी।
1: अपनी है खुद की।
0: और जैसे के हेडपंप लगो पूरा मोहल्ला के लड़कवाए हुए लगे खटपट है खटपट।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं।
0: अगर काउरे रोको ही है तो उसे भी लड़ भी पड़ते काहे कि उनका पिताजी को।
1: नहीं अभी हमारे बगल में हेडपंप लगवाया, बिल्कुल सुरक्षा से लगा है हेडपंप।
0: हाँ।
1: कोई ना खटपट करेगा।
0: हाँ।
1: ना उसको गंदगी करेगा कोई।
0: अच्छा,
1: सौंक सफाई से बिल्कुल तुम्हें कचरा भी नहीं मिलेगा हमारे घर के अंदर।
0: बिल्कुल
1: ना वर की नली बिल्कुल एकदम साफ सुथरी मिलेगी।
0: बहुत अच्छी बात है। देखो कितनी बढ़िया साफ सफाई की बात है, और साफ सफाई होना जरूरी है कि नहीं?
1: तो अब हम अपने हमारे उस्ताद धनीराम कवि की जिनकी लेखा खते है और इसी साल अभी वो खत्म हो गए हैं, तो उन्होंने हमारे बरुआ सागर के ऊपर एक गीत लिखा था, तो उसको हमने गाया है और गाते भी हैं, तो गाते रहेंगे
0: आपकी। अच्छा।
1: कृपा रही तो।
0: हाँ।
1: अरे मोरो मन रंगीर भोरा, मोरो मन रंगी लाल, मोरो मन रंगी भोरा, मोरो मन रंगी लाल, देखो बरुआ सागर आला, आगे किला सरोवर आला, ऊपर लक्ष्मण जी की साला, नीचे बेरो बरुआ नाला, जहाँ हो गए कीर्तन मैना।

लाल आंगे बनो कंपनी बागो जिसमें फूलन भरी सुहागो पौधे बिकता बना विभागो मोटर जा रही धमना ये टोरा मोरो मन रंगी भोरा।

लो। देखो मंडी बनी विशाल, बिकता सब लोगों का माल, अब सुन लो आड़त के हाल, भर भर ठेला जा रही।

0: लुजिगारो बिक रही खोरे डबल पिछोला मोरो मन रंगी भोरा मोरो मन रंगी भोरा मोरो मन रंगी लालो। झांसी जिला हमारा खासो बरुआ सागरो हैरानासो के रे धनी राम जी दासो पर किने चे बसो सिनोरा मोरो मन रंगी भोरा मोरो मन रंगी भोरा मोरो मन रंगी लाल।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, पार किने चे बसो सिनोरा। तो आपको जो सिनोरा है तो इमें अबे आपको कछु ऐसी चीज लग रही कि जो चीज ना होवे या बहुत अच्छी है, बा कौन सी चीज है आपके मोहल्ला में?
0: भाई मोहल्ले के पास में से जुड़ा हमारा किला,
1: हाँ
0: किले के पास ही हम रहते हैं, तो घूमने वाले आते हैं, पर्यटन घूमने के लिए हम तुम भी किले में जाते हैं, प्रतिदिन भी जाना चाहें तो प्रतिदिन जाते हैं, तो किले में बहुत अच्छा लगता है,
1: बहुत अच्छी
0: बहुत अच्छा किले में लगने लगा। और लाइट की व्यवस्था किले में हमारी बाहर भी लाइटें दो दो कदम पर डिब्बे लगे हैं, तो पूरा किला रात में ऐसे दिखाई देता है जैसे कि हनुमान जी वो पहाड़ लेकर के जा रहे हों। अंदर बाहर लाइट पानी की व्यवस्था फूल फलवारी बहुत अच्छा लगता है। आगे अंजनी माता का मंदिर बना हुआ है तो कथा भागवत वहाँ भी होती रहती है, हम तो बैठते हैं 24 घंटे पड़े रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे कर्मचारी भी बढ़िया, चौकीदार लोग अच्छे लोग वो भी है।
1: तो अच्छा आपको कोनो ऐसी बात और ऐसी कोनो खराब बात तो नहीं खल रही कि जो आप के वो चाह रहे हो कि जो काम और होते हो जाए तो हमारा मोहल्ला बिल्कुल अच्छी तरीका से कोनो ऐसी बात आप अगर आपको खटक रहे हो जो काम
0: केवल हमारे मोहल्ले में रहने जैसे कि व्यवस्था एक चीज की नहीं है, सरकार की तरफ से भी नहीं है कि जैसे मोहल्ले में ब्याह सगाई शादी होती है तो हमारी तुम्हारी ब्याह बारात आ गई है तो उसको कहाँ रखेंगे हम?
1: सही बात,
0: केवल हमारे पास मोहल्ले के अंदर ये व्यवस्था नहीं है।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, देखो कितनी बड़ी बात एक रह गई जो आपकी मोहल्ला में, अगर जो काम हो जाए तो बिल्कुल सभी तरीका से आपको
0: इसकी बहुत जरूरत है। और अच्छा सरकारी है। अगर ये कहीं बन जाए हमारे वहाँ जमीन पे तो बहुत सुविधा हो जाएगी।
1: बिल्कुल काहे के जो सामाजिक कार्य है और इसमें सभी मोहल्ला वाले
0: सबका काम चलेगा, हम तुम भी बैठो।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: कोई भी आ जाए, चार रिश्तेदार हैं अगर बैठाना है लेटाना है घर पर व्यवस्था नहीं है किसी के पास तो अपन खोल के ताला वहाँ बैठ सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, केवल अच्छी बात
0: केवल इतनी परेशानी है हमारे मोहल्ले में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, तो जा देखो बहुत बड़ी बात ने करके आई कि अगर जो काम और हो जाए तो बिल्कुल बढ़िया तरीका से। अच्छा वो यही क्रम में अपन बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो बाली बच्चन की लाने स्कूल कितनी दूर पे है?
0: पास ही में है स्कूल तो।
1: अच्छा तो स्कूल की व्यवस्था बढ़िया है?
0: स्कूल की व्यवस्था बढ़िया है, पास में स्कूल है, प्राइवेट भी स्कूल है, सरकारी भी स्कूल है,
1: तो मतलब व्यवस्था देखो
0: व्यवस्था हमारी बढ़िया है
1: शिक्षा की तो।
0: हाँ शिक्षा की अच्छी है।
1: और एक क्रम में
0: खेलने कूदने के लिए लड़कों बच्चों के लिए हमारा जो हमने बताया किले पर भी जाते हैं, तालाब पर भी जाए, झंडा पर भी आए, बाग बगीचे हैं, कंपनी बाग में खूब झूला लगे हैं, खूब झूलो।
1: और एक क्रम में बात करें अगर अस्पताल की कोई रात बिराते अगर बीमार होते हैं तो कितने अपन ले जाते
0: हैं? प्राइवेट अस्पताल है हमारे बरुआ सागर में बहुत ज्यादा भी है।
1: अच्छा
0: तो अपने जब गांव के हैं या कोई बाहर का आ जाता है किसी की रिश्तेदारी उनने कहा भैया चलो हमारे रिश्तेदार हैं चलो तुम खुलवा दीजिए हमें तो बेचीनत नहीं है, तो इस प्रकार से अपनी व्यवस्था हो जाती है,
1: मदद कर देते
0: हैं रिश्तेदार
1: की मदद
0: अपन लोग कर देंगे।
1: चलो बहुत अच्छा,
0: क्योंकि अपन गांव में रह रहे तो डॉक्टर लोग चीनते हैं जानते हैं, अपन को जाना ही है रोज।
1: बिल्कुल सही बात,
0: तो डॉक्टरों की व्यवस्था है, अच्छे डॉक्टर भी है, और हमारे जो बद्री प्रसाद जो है महाराज जो महाराज जी अस्पताल वाले वो भी हमारे नजदीक आई है, तो कहो 11-12 बजे भी वो तो जग जाते हैं इलाज करते हैं।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, तो व्यवस्था
0: व्यवस्था हमारी
1: बढ़िया है।
0: हाँ, बढ़िया है,
1: तो सब साफ सफाई मोहल्ला में
0: साफ सफाई है, बढ़िया है,
1: और रहन सहन
0: रहन सहन बढ़िया है हमारा,
1: ऐसे तो नहीं
0: नहीं झगड़ा वगैरह नहीं होता है कभी कोई किसी का नहीं
1: गाली गलौज कर
0: नहीं नहीं कभी नहीं होता है नहीं नहीं
1: तो ऐसा भी नहीं
0: नहीं जी कुछ नहीं है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए,
0: ऐसा है हम लोगों का, केवल गाने बजाएंगे ज्यादा ज्यादा गाएंगे बजाएंगे केवल
1: बात है, बहुत अच्छी बात है, केवल कमी दी गई है कि सार्वजनिक स्थान
0: कि जहाँ चार लोग हम पानी बरस जाए तो कहाँ बैठ जाएंगे।
1: सही बात है, बहुत
0: केवल इतनी व्यवस्था हो जाए सरकारी तो उसके लिए हम बहुत खुशी मनाएंगे, हम मोहल्ला वासी सब लोग
1: बिल्कुल
0: उनके लिए धन्यवाद करेंगे, सरकार को भी हम धन्यवाद करेंगे।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भैया, तो आपने देखो इतना कीमती समय निकाल के हमें दवाई खिलाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद
0: भाई साहब, धन्यवाद है, नमस्कार।
1: देखो दोस्तों जयते भैया मुन्ना लाल कुशवाहा जी जो बरुआ सागर सिनोरा मोहल्ला के हते और इनसे अपनी बातचीत चल रही थी कि सिनोरा मोहल्ला में कौन सी व्यवस्था आपके लाख अच्छी है और कौन सी व्यवस्था नन्या जो हो वो जरूरी है। सो दोस्तों ये बातें भैया जी ने बताई हैं कि शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया है, लाइट बिजली की व्यवस्था बढ़िया है, साफ सफाई की व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन एक कमी हमें लग रही है इनके अंदाज से जो ये बता रहा है कि हमारी कमी वह है कि हमारे मोहल्ला में सार्वजनिक विवाह स्थल नन्या जो हो वो बहुत ही जरूरी है। सो दोस्तों भैया जी ने अपने मन की बात बताई है अपने ही कार्यक्रम में। सो दोस्तों अगर आप भी ऐसे अपने मन की बात बतावो चाहें ई कार्यक्रम में, अपने गांव की बात बतावो चाहें, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 94-25-14-17-26। सो दोस्तों जो नंबर लगा के आप सीधी बात हमसे कर सकत और आप बता सकत कि माता दीन भैया जी आप हमारे गांव में भी आओ और ऐसी हमारे गांव की जानकारी भी दो। सो दोस्तों हम आपके गांव में भी आए हैं और आप सब जन के गांव की जो खास बातें हैं वे बातें आपसे पूछें और वे बातें इतने रेडियो से आपने प्रसारण करें। सो दोस्तों आपके गांव की भी बात चल है। अब दोस्तों एक क्रम में आप और कह रहे हुए को देखो माता दीन भैया जी ने ये बातें बताई हैं और दोस्तों अब यही बातन के संगे संगे अपनों आज कोई कार्यक्रम से जावे को समय सो हो रहा है। सो दोस्तों अपने ई कार्यक्रम से जावे के लाने हम आपसे कह बो फिर भी चाहें कि अगर आप और अपने गांव की बात बताओ चाहें तो जरूर हमें बताएं, और अगर चिट्ठी पत्री द्वारा बताओ चाहें तो चिट्ठी पत्री द्वारा लिख के भी बता सकत हमें, आप चिट्ठी भी लिख के बता सकत। चिट्ठी लिखवे के लाने आप और लिख लो हमारे पते को। हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। सो दोस्तों ई पते पे आप और चिट्ठी पत्री हम तक भेज सकत। आप साथियों यही क्रम में आज को ई कार्यक्रम बारी हमारे गांव से आपके दोस्त माता दीन भैया को जावे को समय हो रहा है। काहे के दोस्तों घड़ी इशारो कर रही है कि माता दीन भैया आज आपको कार्यक्रम से जावे को समय इतना ही होगा है। सो दोस्तों अपन को समय को पालन करने पड़त है, समय को इंतजार करने पड़त है, समय अपनों इंतजार नहीं करत। सो अपन को भी समय के अनुसार चलने पड़त। जब समय के अनुसार अपन को चल रहे हैं तो देखो समय हमसे भी कह रहा है कि माता दीन भैया आपको समय हो गए। सो दोस्तों हमें दो ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात अगले कार्यक्रम में और अगले गांव में अपन अगली नई बात को जाने और अपनी तपनी मुलाकात हो गए कार्यक्रम के माध्यम से। सो दोस्तों अब अपने माता दीन भैया को दो जावे की अनुमति और आप सब जन से आशा है कि आप और उनको जो कार्यक्रम पसंद आ हुई है। सो दोस्तों अब माता दीन भैया को दो जावे की अनुमति। नमस्कार। बारी हमारे गांव की, आजीविका जाने

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम आजीविका में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, आप जानते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं इस बारे में हम कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताते हैं। कहा जाता है दोस्तों, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है और पद चिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। हाँ दोस्तों, ये कहावत जो कही जाती है, सुनी जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, छोटी छोटी कहावतों से।

0: कहा जाता है कि हम जब किसी के पद चिन्हों पर चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन से हम चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन द्वारा हम चलते हैं, तो हम आगे चलकर एक सफल उद्यमी माने जाते हैं। जो कि हमने कार्यक्रमों में पहले भी बताया था कि उद्यमिता क्या है, उद्यमिता होने के क्या महत्व है। आज के साथ ही हमारे कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सफल उद्यमी के क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे उनको व्यवसाय लगाने चाहिए जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सके। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आपको ले चलते हैं हितेश धाकड़ जी के पास, जो उप निदेशक हैं हमारे औद्योगिक विभाग से, और साथ में कुछ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो उद्योग को लेकर काफी अच्छी उनको पकड़ है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिससे हमारे युवा साथी अपने कार्य में सफल बने, आगे चलकर सफल उद्यमी कहलाए। तो आइए हम आपको हितेश धाकड़ जी के पास ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे युवा साथी किस तरीके से सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सफल उद्यमी जैसे हमारा साथी बनना चाहता है तो उसके लिए क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए?
1: एक सफल उद्यमी की पहली विशेषता होती है अनुभव, अनुभव और उसका ज्ञान होना। आप जिस भी उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं या जिस भी व्यवसाय की आप स्थापना करना चाहते हैं, उसको आपको बारीकी से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप अगर हमारे युवा किसी उद्यम की स्थापना और अग्रसित होना चाह रहे हैं या आकर्षित हैं, तो उन्हें पहले ये निश्चित करके कि आप करना क्या चाहते हैं और आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र विशेष में जहां आप उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं, वहां क्या डिमांड है और क्या सप्लाईज है।
0: जी,
1: क्योंकि देखिए मार्केटिंग भी बहुत बड़ा इशू आता है,
0: बिल्कुल
1: केवल
0: बिल्कुल
1: उद्यम लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि पहले तो मार्केट स्टडी करें, किस चीज की आवश्यकता यहाँ पे है, किस चीज की उपलब्धता वहां पर है, और जो हम उद्यम चलाने वाले हैं उसकी मार्केटिंग हम किस तरीके से लोकल में या बाहर के क्षेत्रों में कर पाएंगे। तो उसके उसको उद्यम लगाने से पहले हमारे युवाओं को थोड़ा सा बेसिक जानकारी उस चीज की होनी चाहिए। अब बात आती है फाइनेंस की, क्योंकि वित्त पोषण भी एक समस्या रहती है उद्यमों के विकास के लिए। तो काफी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन की भी योजनाएं हैं, केंद्र शासन की भी योजना, उनके अंतर्गत हम वित्त पोषण की सुविधा प्रदान कराएंगे।
0: सर एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि व्यवसाय तो ठीक है लोग लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए, बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति को जाना जाए, तो क्या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे व्यवसाय संभव है जो कि आसानी से लोग कर सकते हैं?
1: देखिए अगर ओरछा या फिर निवाड़ी जिले या इस बुंदेलखंड की बात की जाए, तो यहाँ पे कई सारी संभावनाएं हैं। रिसोर्सेस हमारे पास प्रकृति की देन, प्रकृति की कृपा से हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेस हैं। तो एक तो मिनरल्स के क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है। हालांकि निवाड़ी के ओरछा तहसील में काफी सारी इकाइयां खनिज की लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त आता है आपका जो इसकी बढ़ती हुई जो आवश्यकताएं हैं, आप जो वुमन बैग्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें खात्मा करना है, सतर्क रहना है। तो फलस्वरूप एक उसकी वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता बढ़ेगी। पॉलिथिन का वैकल्पिक क्या हो सकता है? तो हम जूट के थैले, वुमन बैग, जो क्या डिग्रेडेबल रहते हैं, जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसकी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे उद्यमों की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि सोना पत्तल हुआ, क्लाइस ब्रिक्स हुआ, सीमेंट उद्योग हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर और जो बाकी प्राकृतिक पत्थर, इनकी भरपूर उपलब्धता है, तो सीमेंट और पेवर स्लॉप वगैरह की काफी संभावना इस क्षेत्र में है।
0: और यहाँ पर सर उद्योग स्थापित कर तो लेते हैं, लेकिन वही समस्या यहाँ पर आती है लोगों को कि उनको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता रहती है, तो क्या सरकार की ओर से ऐसी कोई ट्रेनिंग्स लोगों को दिलाई जाने की बात?

0: की जा रही है या फिर ट्रेनिंग से दिलाते भी हैं वहाँ पर?
1: जी जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने युवाओं को बताना चाहूंगा कि हर जिले में एक RCT की स्थापना की गई है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
0: जी,
1: या उस जिले की अग्रणी बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। हमारे टीकमगढ़ जिले में SBI द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को ट्रेनिंग देना, उद्यमिता से जुड़ी हुई ट्रेनिंग देना
0: जी।
1: हमारे इच्छुक युवा, हमारे इच्छुक भाई बहन जो भी उद्यमिता संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वो एक आवेदन RCT टीकमगढ़ में कर सकते हैं, तथा उनको अगले बैच में जब उनका जो ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी तो उन्हें सूचना देके उनको बुला लिया जाएगा। तो ये हर ट्रेड वाइज, हर उद्यम वाइज ट्रेनिंग रहती है जिसके दिन अलग अलग रहते हैं। तो जो भी युवा इच्छुक है उनको हम ट्रेनिंग शासन की तरफ से मुहैया कराते हैं।
0: सर कितने दिन की इसमें ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं?
1: ये ट्रेड के ऊपर निर्भर करता
0: अच्छा,
1: है। जैसे कि किसी को 15 दिन की ट्रेड रहती है तो उसका 15 दिन का रहता है
0: जी,
1: 20 दिन का रहता है, किसी का एक महीने का रहता है, किसी का 5 दिन का भी रहता है। तो ट्रेड के ऊपर निर्भर रहता है
0: जी
1: कि आपको कितने दिन की ट्रेनिंग दी।
0: सर प्रशिक्षण के बाद यदि उसको प्रमाण पत्र मिलता है तो क्या बैंकों में उसकी, जैसे हम सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ उस प्रशिक्षण वाले प्रमाण पत्र को, तो उसमें कुछ सहूलियत होती है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो प्लस पॉइंट हमेशा आवेदक को मिलता है। वो ये वो जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो वो यह दर्शाता है कि उसके पास एक अन्य लोगों से विशिष्ट उपलब्धि है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उस क्षेत्र का जो भी अनुभव है वो ट्रेनिंग में उसने लिया गया है
0: जी।
1: तो मेरे अनुसार बैंक उसको अधिक कंसीडर करती है, उस पर अधिक विचार करती है और उसको जरूरी लाभ मिलता है
0: जी। अभी वर्तमान में सर उद्योग विभाग की ओर से कौन कौन योजना संचालित की जा रही है?
1: जी वर्तमान समय में उद्योग विभाग में 4 योजना संचालित की जा रही है रोजगार मूलक, जिसमें 3 मध्य प्रदेश शासन की योजना है और 1 केंद्र शासन की योजना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी
0: जी।
1: हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
0: जी,
1: युवा उद्यम योजना
0: जी,
1: और किसान पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संचालित है
0: जी।
1: मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात की जाए तो उसमें 50,000 से लेकर 10,00,000 तक का ऋण सेवा उद्योग तथा व्यवसाय तीनों श्रेणी के लिए लिया जा सकता है
0: जी जी जी।
1: जबकि युवा उद्यमी की बात की जाए तो ये 10,00,000 से लेकर 2 करोड़ तक की योजना है, इसमें केवल सेवा और उद्योग की इकाइयों के लिए ही ऋण लिया जा सकता है
0: जी, जी
1: व्यवसाय शामिल नहीं है
0: जी।
1: और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक है, इसमें सेवा व्यवसाय तथा उद्योग तीनों प्रकार की इकाइयां स्थापित की जा सकती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, केंद्र सरकार की सर कौन सी योजना?
1: एक केंद्र सरकार की योजना भी हमारे यहाँ संचालित है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
0: सृजन कार्यक्रम
1: ये योजना 50,000 से लेकर 25,00,000 तक है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी, और इसमें सेवा तथा उद्योग की इकाइयों की कई स्थापना की जा सकती है, इसमें व्यवसाय आपात श्रेणी में है।
0: चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे युवा साथियों को एक मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि उद्यमता के क्षेत्र में लोग अपने एक तरीके से विचार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं और बहुत ही कम रोजगार हो गए हैं, तो लोग अब उद्यमता की ओर रुख कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

अपना रेडियो अपनी बात है, एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, हमारे हितेश धाकड़ जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक सफल उद्यमी बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए जिससे वो सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, अपने व्यवसाय में सफल हों। साथियों, आप जानते हैं कि क्या बातें हैं सबसे जरूरी कार्य में आनंद करने के लिए, ये एक गुण होता है जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकता है। दूसरा कि गंभीरता, आप तब तक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका उसमें अटूट विश्वास ना हो। ये एक दूसरा गुण होता है जो आपको सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। तीसरा साथियों, आत्मविश्वास की कमी, जो कि हितेश जी ने बताया था कि आत्मविश्वास आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास किसी भी नए उद्यमी के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। चौथा साथियों, योजना आपको बनानी चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय लगाना है, कैसे लगाना है। पूर्ण योजना के साथ यदि हम व्यवसाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक सफल

बन सकते हैं। अगली जो साथियों आपको सफल उद्यमी बनाने का गुण हम आपको बताते हैं, अगली जो गुण होना चाहिए हमारे युवा साथियों को जो सफल उद्यमी बनने के लिए, वो होने चाहिए खतरे उठाने वाला होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोखिम आएंगे आपको यदि आप उद्यम डालते हैं तो। आपको सबसे पहले मार्केट बनाना होता है, और इसके बाद मार्केट के साथ साथ बहुत सारी समस्या जो रहती है वो सामने आती है, तो ऐसे में खतरे उठाने वाला होना चाहिए सब, तभी एक सफल उद्यमी वो बन सकता है। विशेषज्ञता रखने वाला होना चाहिए, यानी हर विषय में उसको जानकारी होना चाहिए, संबंध जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी विशेषज्ञता आपके पास होना चाहिए, खुद में निवेश करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण आपके अंदर हो तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। साथियों कार्यक्रम में हम एक विराम लेते हैं, यानी लोकगीत के साथ मनोरंजन करते हैं, इसके बाद साथियों आपकी हमारी बातचीत होगी और आपको हम बिमल जी के पास ले चलते हैं, और बिमल जी चूंकि विषय विशेषज्ञ हैं उद्यमता को लेकर, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हमारे युवा साथी यदि कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं तो सफल बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, कैसे सफल हमारा व्यवसाय बन सकता है हमारा युवा साथी। तो आइए इस प्यारे से लोकगीत को हम सुन लेते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने हरप्रसाद कुशवाहा और उनकी साथियों में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उनकी बातचीत को हम सुनते हैं विमल जी के साथ।

0: ऐसे में हम क्या करें कि अपनी आय को बढ़ाएं या एक रेगुलर आय हमारे पास में एक आती रहे, जैसे कि हम करते हैं। तो उसका ये कि है कि हमें कृषि के अलावा भी अन्य वैकल्पिक साधनों को खोजने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो हम अपने क्षेत्र में क्या चीज ऐसी करें, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा उद्योग लगाएं जिसमें बहुत कम पूंजी में कुछ उद्योग लगा करके कुछ ऐसा काम करके हम जो है वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में किन चीजों की खपत है, उन खपत के अनुरूप ही हमको उद्यम लगाने की जो है वो आवश्यकता है। अगर हमारे यहाँ पर तेल तिलहन अधिक हो रहा है तो हम तेल का कुछ लगा लें, अगर हमारे यहाँ मसाले अधिक है तो मसाले की चीज लगा लें। तो कैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई आंवला जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आंवले के अचार का लिए हम एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं। कई प्रकार के उत्पाद जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, हमको बहुत छोटी सी कोई हम महीने भर की ट्रेनिंग या दो तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर के और किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक हम बना सकते हैं और छोटा छोटा उद्योग लगाएं, ये भी अगर हम प्रयास करें तो हम अपने आय के साधन में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। आप सर बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
0: धन्यवाद।
2: अपना रेडियो अपनी बातें, आप हैं इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आजीविका को। और साथियों अभी आपने बिमल जी से इतनी अच्छी जानकारी को जाना समझा और हमें तो लगता है कि अब हमें स्वयं का व्यवसाय करने में कुछ देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सारे गुण हैं अच्छे उद्यमी बनने के लिए तो आप तुरंत उद्यम स्थापित

आपको करना चाहिए और उद्यमिता में आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में सफल होने के लिए उसके एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना होता है, परंतु एक उद्यमी की सफलता में सीधे तौर पर व्यवसाय से जुड़े पक्षों के अलावा कई ऐसे पक्ष भी जुड़े जाते हैं जिन्हें उसे काम शुरू करने से पहले और काम करते समय लगातार अभ्यास में लाना पड़ता है। क्या होती है एक सफल उद्यमी की विशेषता, आइए आपको हम थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि हमारे विषय विशेषज्ञ और साथ में उद्योग विभाग के उपनिरीक्षक ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमने भी आपको बीच बीच में बताया कि हमारे युवा साथी किस तरीके से एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों, उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। वह ग्राहकों को तैयार करता है और ग्राहक रोजगार और आर्थिक विकास को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उद्यमी की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल विकास के एक पल्ले पर अगर रचनात्मकता और विचार, खोज और नवीनीकरण देखते हैं तो दूसरे पल्ले पर आर्थिक और व्यापारिक पक्ष नजर आता है। इन दोनों पर्णों को यदि हम अपनी अनोखी सोच से साधने वाले व्यक्ति ही एक सफल उद्यमी कहलाते हैं। कहा जाता है कि क्या सचमुच एक सफल उद्यमी पैदा नहीं होते हैं? इस सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि एक सफल उद्यमी में कुछ प्रतिशत जन्मजात प्रतिभा होती है और बाकी वह सीख सकता है। यह भी कहा जाता है कि उद्यमी एक घोड़े की तरह होता है जो नवीन विचारों की गाड़ी को खींचता है, और उसका मतलब एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में एक साथ कई गुण बहुत जरूरी रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और अन्य वह काम और अनुभव के साथ साथ चमका सकता है। व्यवसाय विशेषज्ञों का यही कहना है कि सफल उद्यमी किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं और वह समाज के किसी भी घड़े में आ सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा उसको अंदर होनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग तरह के वो हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई स्थानों पर उद्यमी के लिए उच्च शिक्षा ज्यादा काम आती है, लेकिन अपने काम को बुनियादी जानकारी जरूर काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के उद्यमी ही साबित हों। प्रथम श्रेणी से मतलब ऊंचा लक्ष्य रखने वाला और हर समय काम करता हुआ दिखने वाला श्रेणी के छात्री सफल उद्यमी साबित होते हैं, ये कहा जाता है। तो साथियों, आप भी एक सफल उद्यमी बनिएगा और अपने व्यवसाय को आगे ले जाइएगा। कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आप अपने व्यवसाय की ओर मुड़िएगा। इसी के साथ साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम सुनकर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप जरूर पूछिएगा। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर है हमारा 9219207749। व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें क्या जुड़ना चाहिए ये भी आप जुड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिएगा। पता है हमारा, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। तो साथियों, अगले कार्यक्रम में किसी नए व्यवसाय, किसी नए सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी मनीष को दीजिए जाने की इजाजत और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत आजीविका से जुड़ा। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब तो स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से, हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहां पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं उस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं। सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और हमारे विद्यार्थी अब असमंजस में हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन मार्गदर्शन देगा, बड़ी मतलब ऐसी विचित्र समस्या रहती है इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें करियर बना सकते हैं, कहां अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं। तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर जानना चाहेंगे,
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खास तौर पर युवाओं का कैरियर, क्योंकि ट्वेल्थ के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी
0: ये जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए, आईएएस आईपीएस की तैयारी करिए, आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खासतौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए? सर
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है, बिल्कुल। बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जो अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विभूचन है कि अब हम कहाँ जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं, ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के न सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर की प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और रेडियो जॉकी बनने के सपना, बहुत सारे युवा हमारे श्रोता जो इस रेडियो बुंदेलखंड को भी सुन रहे हैं, युवाओं का बहुत ग्लैमर होता है कि या तो वो टेलीविजन में एंकर बन जाएं, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें, या रेडियो में लोग उनकी बातों को सुने। यदि आपकी आवाज में माधुर्य है, मेलोडियस वॉइस है, आपकी वॉइस कल्चर बहुत अच्छी है, आपको संचार कौशल बहुत अच्छा है, बोलने की कला है और आप के पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो आपको रेडियो जैसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक मतलब स्क्रिप्ट लेखक जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं, इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम है, टेलीविजन में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है जहां पर ना सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करेस्पोंडेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन

0: बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं, और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं, जो हमारे बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के बच्चों के युवाओं के विशेष तौर पे जो मोबाइल है वो उनका कन्वर्जेंस मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। मोबाइल या छोटे स्क्रीन पर बहुत सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, फिल्में भी लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, आप उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी आप वहां देख सकते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र के बारे में अच्छे से आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं, आप एनिमेशन की सहायता करके भी, तो एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम जो हमारा 100 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहां पर आप जो अखबार हैं, और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार हैं, आज तो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार हैं। अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी 2020 आई है, उसके बाद से युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में ही हम व्यावसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं। तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो, हमारी अपनी अन्य चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो, मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है। और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रडानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, धमाल में खूब कर रही हैं और खूब लोगों ने सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने भी खूब हैं। तो बिन्नू रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नू रानी जरूर बने।
1: बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खासतौर पर 12th के बाद, जैसे कि इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी जाना चाहता है, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर विस्तार से।
0: मैं आपकी पुनः प्रशंसा करूंगा। दूसरा प्रश्न भी आपने युवाओं के हित में बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है, मैं इस बात पर आने ही वाला था। हमारे मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो अपनी इस समय द वीक और इंडिया टुडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम हैं, उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोताजन mcu.ac.in वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है, हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है, और निमाड़ में हमारा खंडवा परिसर है, जो और इसी तरीके से हमारा एमसीयू दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में और रेडियो करमवीर भी है, तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा 12th पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स जिनको हम यूजी पाठ्यक्रम कहते हैं, वो एनईपी आधारित 4 वर्षीय हमारे यूजी पाठ्यक्रम है। दतिया परिसर में हमारे पास बीए जनसंचार पाठ्यक्रम है और साथ ही बीबीए मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट हम दतिया परिसर में दे रहे हैं। खंडवा और रीवा परिसर में भी हमारे बैचलर पाठ्यक्रम है, और हमारे विश्वविद्यालय के बैचलर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो हमारे पास बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास बीए जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग में है जिसको हम बीए जेसीडब्ल्यू कहते हैं, इसके बाद हमारे पास बीए इन मीडिया रिसर्च है, बीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, बीएससी फिल्म प्रोडक्शन है, बीएससी मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, बीएससी एनिमेशन में हमारे पास बीए मास कम्युनिकेशन है, बीए इंग्लिश जर्नलिज्म है, और हमने बीए हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है, क्योंकि एनईपी में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था, और उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में भारतीय भाषा, विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी, हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर कोर्स शुरू किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास यूजी हैं, और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम, जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो,

0: होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उसके लिए एमए प्रसारण पत्र का आता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एमए इन डिजिटल जर्नलिज्म है, एमए इन प्रिंट जर्नलिज्म है, एमएससी मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा एमएससी न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास एमबीए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम एमबीए भी ऑफर करते हैं, एमए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, एमएससी फिल्म प्रोडक्शन है, एमए मास कम्युनिकेशन है, हम लोग एमलिव और बीलिव पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम, और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है कि हम लोग हर 2 साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं हाईली प्रोफेशनल हैं, और बीच बीच में विशेष व्याख्यान है, मास्टर क्लासेस के लिए हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, विद्यार्थियों के एजुकेशनल विजिट के लिए उनको टेलीविजन स्टूडियो है, प्रिंटिंग प्रेस है, रेडियो स्टेशन है, वहां की भी विजिट कराते हैं। बहुत जल्द ही हमारे दतिया परिसर के विद्यार्थी भी आपके रेडियो बुंदेलखंड का विजिट करेंगे,
1: बिल्कुल
0: और हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक कामों के लिए उनको इंटर्नशिप पर भी अटैच करते हैं।
1: जी,
0: तो समग्रता में हम मीडिया शिक्षा देने का प्रयास अपने परिसर में विद्यार्थियों को, ना सिर्फ हम मीडिया शिक्षण देते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास 360 डिग्री, उनका हम डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें, और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में
1: जी
0: आवाज के आरोह अवरोह को,
1: बिल्कुल
0: वॉइस
1: सर,
0: मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को,
1: जी
0: वॉइस को, क्योंकि कानों का माध्यम है,
1: बिल्कुल
0: तो इसमें आप रिपीट नहीं कर, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए, सटीकता चाहिए, साथ ही एक गति ऐसी चाहिए कि श्रोता आराम से सुन पाए, क्योंकि उसको
1: बिल्कुल सर,
0: दोबारा सुनने का, उसका अर्थ समझने का अवसर नहीं है, जो
1: बिल्कुल
0: प्रिंट
1: सर,
0: माध्यम है। रेडियो माध्यम बहुत ही अलग माध्यम है,
1: जी सर,
0: तात्कालिक माध्यम है, ताजा माध्यम है, क्योंकि इसमें इमीडिएसी का महत्व है,
1: बिल्कुल सर,
0: इसमें कोई भी अंतर्वस्तु को आप बहुत तत्काल और ताजा अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: सर,
0: ये एक ऐसा माध्यम है कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए सुन सकता है, वो
1: बिल्कुल
0: अपने
1: सर,
0: ऑफिस में, यात्रा के दौरान, कार चलाते हुए,
1: जी
0: अपने दफ्तर में, इवन
1: जी
0: गृहिणी अपने घर में भोजन पकाती हुई
1: बिल्कुल
0: रेडियो
1: सर,
0: माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी,
1: जी
0: आज भी लगभग 100 वर्ष होने को है, अगले 3 हम लोग 97 वर्ष रेडियो
1: बिल्कुल
0: प्रसारण के भारत में कर चुके हैं, और
1: जी
0: रेडियो माध्यम आज भी पॉपुलर है, और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित
1: जी
0: करने
1: सर,
0: में आपने मुझे आमंत्रित किया,
1: जी
0: उसके लिए
1: सर,
0: आभारी हूँ,
1: जी
0: और उन
1: सर,
0: सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
1: सर इसमें से बस, चूंकि आपका समय अमूल है, हम जानते हैं सर, इसमें से भी दो प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहें, साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ष लगता है, तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपना जॉब को भी देखते रहें, ये सब।
0: जी, हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत हैं, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं, तो
1: जी
0: उन सब की अवधि, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है, माखला
1: जी
0: चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है, जिनको आप MCU.AC.IN पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: वहां पर हमारे डिजिटल मीडिया, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है,
1: जी
0: और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी वहां पर अभी माननीय कुलपति जी एक

0: कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्टिंग में और रेडियो जॉकी भी यहाँ पर प्रस्तावित है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। बिन्नू रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है, तो उससे प्रेरित होकर भी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूँ तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि यहाँ पर फिल्म एक्टिंग को लेकर और यहाँ पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफी मांग है। तो हम लोग भोपाल में इस पर विचार करके जल्दी यहाँ पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे, आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है। अगर दतिया परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में सहयोग से यदि बहुत सारे युवा सहयोग करेंगे, अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, जैसा भी आपको उपयुक्त संगे 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं। और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, तो हम उसको निःशुल्क आयोजित कर सकते हैं। पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार करते हैं और हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए यदि सेवा करने का अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग से हमें प्राप्त होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर और खास तौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर
0: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुअन को हम जय का ऊंचा कि वे आए और जा क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नू रानी धमाल कर रही आप और रन भी धमाल करें, जय बात के साथ, जय राम जी।

बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और अभी आपने डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को सुना जो HOD है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से, और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे युवा साथी अपना कैरियर भविष्य बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना करियर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पर रील हुई और फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी, हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर, अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं, इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। साथ ही इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के 5 ओरछा, और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हैंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था थी कि नहीं। देखो, जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो कहे कि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जाते, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती है और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपन और देखो कि आज जितनी भी कहानी अपन और ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या कोई जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे ब्योरे देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की इस कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो और साथ

भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेकर भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: क्या नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। क्या करती हैं अम्मा?
1: आंगनवाड़ी में काम कर
0: रही। आंगनवाड़ी में होंगी। कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से कर।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कहते हैं वो?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौराहे, ढाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ।
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में खूब हो तो?
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, 3 बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा थे।
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम हो तो?
1: वहाँ पे तो चौका वर्तन करते सब के थे। ज्यादा जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: हमारे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा के लिए क्या करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो थे, कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया में लगते है, 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती। 10-5 रुपए 10 रुपए दे देती महीना भर में।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहता। अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और का काम आपने? पढ़ाई कितने तक करी है आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल में।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो बचपन में काम तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसमें और छोटे जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करने की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी है, जब तो खेलता ही खाते।
0: हाँ, तो वही खेलने की बात हम कर रहे हैं कि आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, ये ये खेल खेलते तो होता है।
0: अच्छा, कंची
1: चपट्टा खेल रहा है।
0: चपट्टा
1: सावन को मुझे चपेटा कलर।
0: अच्छा अच्छा,
1: जो खेल रहा है।
0: तो सावन में आप गीत भी गाती हैं? खेलत में गीत, गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में था।
0: अच्छा, गीत ही नहीं आते? पहले तो गाती हूँ आप?
1: अबे यार भूल गए, तो बुढ़ापो ऐसे कुछ नहीं आता।
0: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको? 60 साल हो रही, लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था
1: आपको? नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाते हैं?
1: कौन नहीं गाते हैं
0: आप? गाते नहीं। अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन थी?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेली हम कब जाने कहाँ कहाँ गई को।
0: तो नाम को काल
1: को अंगूरी ना तो काल को पुष्पा ना तो ऐसे सबके नाम आते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो गई। अपने अपने घर चली गई सब।
0: अब मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ, हम मिल जाते हैं।
0: मिल जाते हैं, इकट्ठी हो जाते
1: हैं। कभी कभी इकट्ठे हो जाता, खुशी तो जो से आप लोग मायके में आप तो सब बहने मिला तो अच्छा लगता
0: है। अच्छा लगता है। अच्छा अम्मा, जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन सी होती, मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन सी चलाते?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते और खिला कर नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते, ये पहन लेते और हम तुमने खिला कर दे रही तो भी पहन लेंगे और ये कह रहा हूँ।
0: मतलब कोनो अलग से नहीं
1: है? कोनो अलग से नहीं है। तो
0: अच्छा, तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितनी उम्र में
1: हुई? हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन, कितने उम्र में हमारी भाई आती।
0: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी।
0: बिल्कुल नहीं जानते? अच्छा, जिसे आपकी शादी हो रही थी वो आपने देखा तो?
1: हाँ,
0: पहले से देखा तो?
1: हाँ, नहीं नहीं, पहले कहाँ देखा देखते, पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा।
0: अच्छा,
1: टेक से तो आते ही हमारे बाप बताई 8-9 साल के साथ 9 साल के हम आपके पिताजी गुजर रहे थे, 9 साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा,
1: तो जिन दिन को काम कर रखते हमारी मताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने, बोली तो मैं 10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 से उन लोगों ने सबने 100 रुपया देने में दाए थे।
0: अच्छा,
1: तो वही बताई नहीं होती कई मतलब
0: 500 रुपया
1: नहीं सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और ज्यादा दे दे जैसे ही बिटिया को पुन ब्याह हो रहा पुण्य में दे दो पैसा।
0: अच्छा,
1: बड़े बड़े सेठ लोग
0: जब आपकी ब्याह हुआ इसके बाद कितने आपकी ससुराल से नहीं राधापुर में भाई है
1: राधापुर
0: में ससुराल है आपकी, तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगे, जैसे पहले दिन तेल मंडप
1: पहले मंडप तेल लगाओ फिर मंडप बो टीका।
0: अच्छा तीन ही दिन को ब्याह होता
1: है? हाँ तीन दिन को होता है।
0: तो बारात तीन दिन मिली रही थी कि एक
1: ही दिन? एक ही दिन तीन दिन मिली रही थी बारात
0: तेल वादना आ जाती
1: नहीं माँ ब्याह तो टीका के दिन।
0: अच्छा
1: और फिर भाव मार बारात टीके तो वो दिन छोड़ी जाती बारात दूसरे दिन जाती
0: तो जब जयमाला डरी तो आपकी
1: जयमाला नहीं डरी हमारा जयमाला नहीं डरी मैंने तो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन खोलियन पे चला वही को लांगा वही को दुपट्टा।
0: अच्छा
1: और जब तुम जो होट बल्लाल बापो बुलाई।
0: अच्छा
1: खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत हो लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मरा चढ़ो फिर भावरे
0: कहाँ चढ़ा तो आपको
1: हाँ पेज में चढ़ी थी एक किलो के वो खम वज्जा
0: एक किलो की पेज
1: ना हाँ एक किलो के पेज ना हाँ। खम वज्जा
0: बस
1: दो और जाइए तो पैर अब तो पैर नहीं थे
0: बाजू बंद
1: हाँ
0: हाँ
1: दे चढ़े थे।
0: अच्छा
1: तो अभी रखे हो आप
0: भाई
1: बहन की बात छह लड़का होगा छह लड़का कर ले।
0: अच्छा
1: कहाँ से
0: आ रहा है अच्छा आपकी विदा का है भाई दी
1: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं वही में वही थी
0: पिता
1: नहीं उतर से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे
0: बैलगाड़ी में
1: बैठी बैठ जाते लेकिन बैठ जाते लेकिन हमारी गाड़ी गई से
0: आई थी। अच्छा
1: बैलगाड़ी से होती पहले बदा सवाई की होती है मजी का। वाहन कहाँ थे और चा तक नंगा जाते खेला तक नंगा जाते अब तो एक कदम नहीं निंगरा आदमी
0: अब तो अगर तुम्हें भी जाना
1: है अगर तुम्हें कारस देव में जाना है तो गाड़ी
0: से जाना है सही बात है। तो फिर जब आप विदा होके इतने आई तो इतने ससुराल में कुकू मिलो आपको
1: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
0: अच्छा आपके अम्मी नंबर की है
1: थी दूसरे नंबर के नानी नौ दो
0: नंदन की शादी हुई
1: हाँ।
0: अच्छा शादी के बाद
1: बड़ी हाथी
0: बड़ी हाथी। अच्छा तो फिर आपके एटे का रस में भाई मतलब कंकन छूटा
1: कंकन छूटो हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहे थे फिर चले गए थे।
0: अच्छा और खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई
1: खिचड़ी बनाई थी
0: आपने खुद बनाई थी
1: नहीं बना पाई थी हमने जेठानी ने बना दी थी।
0: अच्छा
1: और चमचा से तरवा दी थी
0: नाम होगा
1: तो ओरेंडर बना दे।
0: अच्छा
1: ओरेंडर
0: वाली जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई
1: और
0: सबने खाई तो फिर
1: कहाँ
0: नहीं मिलो तो
1: हमें नहीं कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने
0: पड़े थे चूल्हे में वो देने
1: हैं हाँ ये सोल्डर नहीं मोरा पहले देता ही है तेल।
0: अच्छा।
1: अबे भी देता मोरन के
0: जैसे
1: हाँ। खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा सा बहू से सास लेते हुए पैसा।
0: अच्छा
1: चाहे दस दरे चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ
0: रख
1: लेकिन वो सास ले ओरेंडा तो ओरेंड पे रखत बहु तो बेबी सास ले।
0: अच्छा
1: जी का सास ना हो तो जेठानी
0: ना तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलते ही सास तो आपके समय में खुलत
1: नहीं हमारे समय में नहीं खुलत
0: जूड़ा नहीं खुलत
1: नहीं।
0: अच्छा आपकी
1: जो छोड़ा खुलत जो
0: छोड़ा खुलत
1: जो छोड़ा
0: हाँ तो ये भी पैसा
1: सास कर सकती है जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास
0: नहीं तो
1: महत्व
0: अच्छा आपको नहीं पता
1: छोटे आते तो कछु नहीं आते
0: फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपनी ससुराल में फिर कैसे काम कराती जिठानी के संग में

0: ये जानने के संग लड़ाई का
1: कौन होती कब लड़ाई नहीं हुई आप
0: नहीं हमारी नहीं भाई ये था ना सास से भाई कब
1: होना आप सीधी हटी के दो जने
0: दो एक से आते मिल के कर लेते हो बस सबने फिर सियान होगा तो सब अलग अलग होगा।
1: अच्छा और सासरी में का काम होती है
0: खेती खेती होता है रात से खेती होती।
1: अच्छा
0: पहले मोटर कहाँ होती रात से खेती होती तो रात चलात रखते।
1: अच्छा और जैसे जब खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती है
0: चक्की पी सकते हो सवेरे 4 बजे से।
1: कितने बजे उठाती हैं आप
0: 4 बजे उठ जाते हैं 4 बजे से पी सकते 5-6 किलो नाच पीस लेते
1: 5-6 किलो रोज पीसने
0: हाँ रोज इतना जेठानी पी सकती
1: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती हो
0: 4 बजे से भी पी सकती
1: संगे पी सकती
0: ना करो संगे करो अलग अलग पी सकती।
1: अच्छा फिर उनके बाद चक्की पीसने के बाद काका काम करते
0: गोबर गोबर डालते
1: कितने गाय भैंसे होती
0: है बोला 10-12 गैया होती गोबर मोबर डालते झाड़ा झूठी करते फिर एक जनी रोटी बनाने लगती एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा ऊपर वो काम हाँ, कर लेती
0: तो फिर कुबा पे 8 बजे तक निकल जाते सो घाट चलाते दिन भर।
1: अच्छा वो हाथ से बहाने आते
0: नहीं बैलन से घर में नहीं आती लोग सो वही चलाते रहते कब हम सात जठानी चलाती कब हम चलाते रहते
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती है। अच्छा आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा
0: है हमारा 6 लड़का
1: छह लड़का और लड़की
0: लड़की नहीं है एक
1: लड़की नहीं है एको। तो अपने लड़का को तो पढ़ाओ जो
0: हाँ पढ़ा परेशानी हटी से कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा
0: 5-5 पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा सरकारी स्कूल हाँ। में तो अब सबकी शादी हुई
0: हाँ सबकी हो गई सब सब नाती ना तुम लड़की हो गई।
1: अच्छा नाती इनकी भी हुई कितनी नाती है
0: 6 नाती है 6 नातने हैं।
1: अच्छा
0: तो
1: आपकी को मतलब बड़ा परिवार है।
0: हाँ तो 6 लड़का है तो 2-2 है सबके।
1: अच्छा,
0: और एक के 4 है बड़े के 3 मोड़ी है तो एक मोड़ी तो आप बेरोजगार हो गई
1: परिवार है।
0: 3 मोड़ी के 2 मोड़ी मोड़ा होगा एक के छोटी एक के मोड़ा होगा एक के मंजिले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा है वो
1: तो बहुत बड़ा परिवार है। आपको अच्छा लगा तीती भान पे हुआ सब जने आ जाते हैं तो अच्छा लगा ना। तो आप सुनाटा नहीं खेलती हो कैसे खेलती आप अपने
0: सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो बस पर खेल
1: गाना भूल नहीं आते याद करने आते बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी हैं अम्मा। लेकिन एक बात और आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप
0: 20 साल से ज्यादा हो गई
1: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी
1: कैसे लग गई थी मतलब
0: पहले 4 जन्म के कागज दे थे घर के तो सबने 200 रुपया में लगते तो सब जना ने कही 200 रुपया में का खा रहे हमें नहीं करने हमें नहीं करने से फिर बोली चाची तुम लग जाओ अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सकत
1: हैं
0: 350 में लगते हमें 200 रुपया
1: धीरे धीरे करके
0: फिर हम इनके ससुर बोले लग जाओ हम दे दे वो करें तो मैं 2-4 रुपये ली नाच खावे के गाँव में बज का कर इनके ससुर दे देते 2-4 रुपये ली नाच हम पानी भरे आते इनको लगे रहे इनके तो पानी तो अभी छोड़ दो हमने बना तो नहीं अब जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब इसे पानी भर उनको बोला खाए पीबे की परेशानी से जैसा नहीं तो जो दे तो सकते खाओ नहीं करते तो को दे रहे
1: सही बात है
0: तो को देना कर
1: और आज आपको कितनी मिल जाती मतलब आपको घर चला भी लाके मिल जाता आपको
0: 5,000 होगा ये 2-3 महीना नहीं 2,500
1: फिर
0: 350 है हमारे फिर 1500
1: धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए आपके पैसा बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव कर रहा हो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो
0: हम जो खेती किसानी सीखी हो आंगनबाड़ी कर ली कर
1: नहीं आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व
0: देने तो महत्व देखो आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते लेकिन पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है
0: अब जैसा पेट को तो रोटी नहीं है पढ़ दे की का सोच रहे बताओ
1: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल फ्री किताबें मिल रही
0: है लेकिन अब मिल रहा है पहले कहाँ मिला
1: हाँ पहले नहीं मिला तो लेकिन अब मिल रही तो अभी के नाम पढ़ाए चाहिए है ना बिल्कुल। तो अम्मा और का क्या वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से
0: और का
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुश सुन रहे हैं

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन हो रहे सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन हो रहे ने जानो है गो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है गो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है गो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और इन्हें जानी हैंगी। और साथ में इन्हें बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई जब बहुत अच्छी बात हैगी, कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहेंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े होके सिर्फ उखो चौका वासन करने आ है गो, घर को काम ही देखने आ है गो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपना परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़तो। तो देखो अब अपनो समय होते है वो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ई के लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। और साथ ही आप हमें अपनी राय सुझाव फोन के माध्यम से भी दे सकते हैं, साथ में आप हमें SMS भी कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई हैगी, क्या कि आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैं, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैंगे अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपनो समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की इजाजत, अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चला चला सुनो आप गीत खो जी खो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और किसान साथियों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस बार चूंकि किसान पर हमारे किसानों की जो फसल की बुवाई वो बहुत पीछे हो गई है और बहुत सारे किसानों ने वो भी नहीं पाई है, क्योंकि जून से लगातार इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण हमारे किसान साथियों ने अपने खेत में बहुत ही कम फसल लगाई है, जिससे हमारे किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। और खुशी भी इस बात की होगी कि इस बार बारिश बहुत अत्यधिक होने से हमारे किसान साथियों के लिए फसल में काफ़ी मुनाफा होगा। लेकिन क्या करें, ये मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, इसको कौन रोक सकता है। प्रकृति के साथ हम लोग जो निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, इससे बदलाव जो हो रहा है उससे जो खामियाजा हमें और आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सभी को भुगतना पड़ रहा है। खैर, लेकिन एक पहल है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। इसी को लेकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मशरूम और खासतौर पर जो हमारे खेतों में उगाई जाने वाली चीजें रहती हैं, उससे किस तरीके से जो फायर की जो कपड़े रहते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके का स्टार्टअप है ये, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किस तरीके का स्टार्टअप, इसको हमें सीखना और समझना होगा, इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी और नई चीज हमारे देश को मिलने जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा को।
1: ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी है, जो डीप टेक भी है, नोवेल टेक भी है और ड्यूअल टेक भी है। तो ये हम बना रहे हैं मशरूम माइसीलियम से, और इसमें हम सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल विच इज हाई परफॉर्मिंग वेयर, वो बना रहे हैं हम इससे। तो हम इसमें मशरूम उगाते हैं हमारे माइसीलियम स्ट्रेन से, जो हमने प्रोक्योर किया है, हमने काफी स्टडी के बाद उसे ऑप्टिमाइज करा है, और फिर हम इसे ग्रो करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी हमने पहला आइट्रेशन बना लिया अपने फाइबर का। तो ये हम जो बनाते हैं ये एग्रीकल्चरल वेस्ट पे ग्रो करते हैं, तो इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक मदद मिल जाती है, क्योंकि हम उन्हें कुछ पैसे दे के उनसे वो वेस्ट लेते हैं, जो वेस्ट वैसे वो जला देते हैं। तो उसकी वजह से आप सब्जी जानते हैं कि कितना AQI का दिक्कत हो रहा है दिल्ली में भी।
2: बिल्कुल, तो आपने कहा ये मशरूम माइसीलियम से तैयार किया जा रहा है, तो मशरूम माइसीलियम है क्या आखिर में?
1: तो जो भी फायर

0: प्रोटेक्टिव अपैरल या प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। तो हमें जो ये आइडिया आया था, मैं आईआईटी दिल्ली में थी और उस वक्त मैं इमर्जन कर रही थी अपना, मैंने माइसीलियम को देखा और मुझे लगा इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू मेक सम काइंड ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल, और वो बायोबेस भी होगा क्योंकि अभी जो भी बन रहा है वो सिंथेटिक फाइबर है, विच इज ऑल्सो वेरी पॉल्यूटिंग एंड वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एज वेल एज आफ्टर दैट। तो हमने फिर माइसीलियम की प्रॉपर्टीज को देखते हुए उस पर काफी वर्क करा और हम फिर उसे उगा रहे हैं और उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम ये बना रहे हैं इससे भारत लीडरशिप, इट विल गेन अ लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिव वेयर अपैरल।
1: जी, तो आपने यहाँ पे सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट की भी बात की है, तो हम समझना चाहेंगे कि जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट है उसे कैसे बेहतर है ये।
0: पहली बात तो जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट फाइबर या अपैरल जो भी बनता है उसमें वो पेट्रोकेमिकल बेस्ड सिंथेसाइज होती है, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है इवन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को उठा लें, जब वो बायोडिग्रेडेशन के लिए जाता है आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है, उससे जो वेस्ट होता है इट्स लाइक फॉरएवर फाइबर्स आर देयर लाइक पॉलिएस्टर एंड एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिग्रेड, तो वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है। तो हमारा सबसे मेजर जो यूएसपी है वो सस्टेनेबिलिटी है, हम बायो फाइबर बना रहे हैं, जो अभी तक बना हुआ है कहीं भी बाहर क्योंकि इंडिया ने अभी नहीं बनाया है, वो सारे सिंथेटिक बेस में बन रहे हैं। जो हम बना रहे हैं उसमें ग्रोथ के टाइम ही कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद हम सिर्फ मेडिकल वेस्ट को छोड़ के बाकी सारा जो वेस्ट जनरेट होगा उसे बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे प्रोडक्शन में भी वेस्ट यूटिलाइजेशन है। और उसके अलावा हमारा पोल्यूशन क्रिएट कम हो रहा है क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम डीपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। हालांकि हम थोड़े बहुत केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, पर हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन और वेस्ट को नेगेट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो नेगेटिंग इंपोर्ट रिलायंस।
1: कौन से प्रोसेस के तहत आप इस मशरूम माइसीलियम को यूज करके और किस तरह से क्या प्रोसेस है जैसे आप इसको तैयार कर रहे हैं?
0: हम जो मशरूम, जैसे हमने माइसीलिया मशरूम की जड़ होती है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जो हम कई बार खाने में इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हम जो यूज कर रहे हैं स्ट्रेन्स वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर उससे हम सिर्फ उनकी जड़ उगा रहे हैं। तो हमने दो प्रोटोकॉल सेट करे हैं अभी, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। तो हमारी जो जड़ उग रही है फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक जब माइसीलियम की ग्रोथ हो जाती है जो हमने अचीव कर लिया 3 हफ्ते में हो जाती है हमारी, इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल, तो 3 हफ्ते के बाद जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं और ये हम उगा रहे हैं उस माइसीलियम को एग्रीकल्चरल वेस्ट पे, तो उसे भी हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम प्रोक्योर करते हैं, उसे सॉर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, वो एक तरह से हमारे माइसीलियम की ग्रोथ के लिए खाने का काम करता है। और उसके बाद हम जब माइसीलियम ग्रो हो जाता है उसे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस फर्दर प्रोसेस करते हैं जो हमारा डिवाइस प्रोटोकॉल है उससे, एंड उससे फिर हम फाइबर बनाते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक बनाएंगे और उसके बाद उससे किन्हीं प्रकार के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं फायर रिटार्डेंट हाई परफॉर्मेंस वेयर।
1: जी, तो आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि भारत जो है उसके पास खुद के फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स नहीं है, बाहर से खरीदने पड़ते हैं, तो किस तरह की समस्याएं जो है, मतलब ऑब्वियसली डिफेंस का मामला आ जाता है, तो डिफेंस में किस तरह से मददगार साबित होगा ये?
0: क्योंकि हमारे पास अभी सेटअप नहीं हुआ है, खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी की काबिलियत आई नहीं है, हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारे देश में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, पर हम अभी इस क्षेत्र में उतरे हैं तो हम अब बनाना शुरू कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी इस रिगार्डिंग। तो हम जो बना रहे हैं वो हम पूरा खुद की क्षमता से बना रहे हैं, हम ग्रो भी खुद कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस भी खुद कर रहे हैं, तो हमारी रिलायंस बहुत कम हो गई है इवन कोई भी और प्रोडक्ट लेने के लिए, हमें कुछ भी बाहर से लेना ही पड़ रहा है और ये हम नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया में भी बन रहा है तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइंस पे असेंबली हो रही है, हम उसके रॉ मटेरियल फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं, देयर आर पार्ट्स दैट आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे आर असेंबल्ड हियर। तो अभी इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी क्षमता नहीं है, हम उसे ही विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये बना लेंगे तो भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी क्षमता होगी, भारत एक लीडर होगा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी किसी ने बायोफाइबर बनाया नहीं है, बायोफाइबर विच हैज इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट कैपेबिलिटीज। तो जब हम ये बना लेंगे एक तो भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ऊपर हो जाएगा एंड हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उस चीज को, और हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आएगी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आएगी जो कि अभी नहीं है।
1: तो आपने बात की है कि फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स की, तो हमारे जो डिफेंस है उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि जब अगर हमारे यहाँ पे भारत में ये चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो किस तरह की जो चुनौतियां वो खत्म हो जाएंगी?
0: तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी पहली बात तो, और जो हमारा डिफेंस है वो सारा प्रोक्योरमेंट बाहर से हो रहा है, तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो एक उसकी वजह से जितने

0: जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है. सो बेयरली 10% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इट हैपेंस क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाता है. उसके अलावा सूट्स का वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं हम उसको 50% से उसको लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये निर्भरता, टाइम की दिक्कत, इवन जो पैसा लग रहा है वो कम हो जाएगा क्योंकि हम इससे कम से कम 30% कम में दे पाएंगे इस प्रोडक्ट को. और ये सारी दिक्कतें सारी सॉर्ट हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से और कोई भी प्रोडक्ट कस्टमाइज करना हो तो वो हो सकता है.
1: तो जो एक फायर रिटार्डेंट होता है उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो अग्नि अवरोधक के तौर पर काम करे?
0: तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल दैट आर आउट देयर. उसमें वेस्ट्स हैं, कवरऑल्स हैं, सूट्स हैं. तो जो सूट का क्राइटेरिया है वो पहले बेसिक होता है, सूट होता है अप्रोच सूट, फिर होता है प्रॉक्सिमिटी सूट, फिर एंटी लेवल सूट, जिनकी फायर रिटार्डेंसी डिग्रीज होती हैं. तो वो डिग्रीज होती है 50 डिग्री से लेके वो 1200 तक जाती है फॉर एंट्री सूट. तो इसके और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कितनी दूरी से आप आग बुझाने जा रहे हो, कितनी देर तक उस आग में खड़े रह रहे हो, ये सारी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हम बना रहे हैं टाइम डिस्टेंस एंड द डिग्री ऑफ फायर डिग्री दैट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द फायर सिनेरियो, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ताकि इसकी बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी आए और जो हमारे अग्नि रक्षक जा रहे हैं आग में बचाने उनको काफी सुविधा रहे और वो अच्छे से अपना काम कर पाए बिना खुद को हानि पहुंचाए.
1: वसुंधरा जी के एफर्ट्स हैं ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं. अभी किन किन सेक्टर्स में और एक बड़ा बदलाव आएगा इस टेक्नोलॉजी से वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. तो क्योंकि अभी हम सिर्फ अपैरल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो फायर रिटार्डेंट है क्या हम इनको बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, बाकी जगहों पर भी यूज होता है क्या? वैसा भी जो आप बना रहे हैं एग्री वेस्ट से ऐसा भी कुछ आप तैयार कर रहे हैं?
0: जो हम बना रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस फायर प्रोटेक्टिव बेयर है विच इज प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बहुत सारे और भी यूज हो सकते हैं जैसे कि टाइल्स, रोड ब्लॉक्स, बायो ब्लॉक्स, फायर कर्टेंस, सीट, कार सीट कवर्स, इवन लिथियम आयन बैटरी जो एक्सप्लोड होने की जो कई केसेस आए हुए हैं उनके भी ऐसे कवरिंग दे सकते हैं जिससे कि वो रुक जाए, उस पर रोकथाम हो, वो निगेट हो जाए. तो इसके सिर्फ फाइबर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, फायर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं. जैसे डिफेंस तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा सिविल इंडस्ट्रीज में आप कोई सी भी सिविल इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, मेटल, इन सब में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है फायर प्रोटेक्टिव सूट्स की, या वेस्ट के फॉर्म में, कवरऑल के फॉर्म में, प्रॉक्सिमिटी सूट्स के फॉर्म में, ये रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी भी है, तो सस्टेनेबल टेक्सटाइल भी एक इसका उपयोग हो सकता है. तो इसका उपयोग भारत में सिर्फ डिफेंस में नहीं, अलग सिविल इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है. मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट है, हर शिप पे 10 रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट ऐसे सूट्स की, और इसकी हर इंडस्ट्री में डिफेंस से लेके सिविल इंडस्ट्री से लेके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक इसकी रिक्वायरमेंट है.
1: वसुंधरा जी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है एग्री वेस्ट से आप इसको तैयार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं क्या उनको भी एक इससे बूस्ट मिलेगा?
0: तो हमारा जो ये हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं इसका एक मंतव्य ये भी था कि हम जो हमारे लोएस्ट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे जो फार्मर्स हैं उनको भी इससे कुछ संभावनाएं उत्पन्न हो, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की बहुत जरूरत होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है इससे. तो हम जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं इस माइसीलियम को उगाने के लिए अपनी प्रोसेस में, वो हमारा बायोमास है और उसके लिए हम उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं. जैसे करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड अ गुड कंपनसेशन फॉर अराउंड 1 टन ऑफ वेस्ट दैट वी विल हैव टू प्रोक्योर, तो इससे उनकी भी आर्थिक सहायता होती है और उनके जो वो, क्योंकि उनके लिए वैसे भी वेस्ट है जिसको वो जला देते हैं जिससे कि AQI बढ़ता है और पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो उनको एक ऐसी आर्थिक सहायता मिलती है जो उनके लिए वेस्ट है उस चीज को बेच के हमें.
1: यहाँ पे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बायोमास आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं?
0: तो जो हम बायोमास उगा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे उगा रहे हैं. बायोमास हमारा मशरूम माइसीलियम है, हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी कभी कभी बायोमास मिला देते हैं. तो हम इसमें ज्यादातर पराली और भी कई प्रकार के एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं. इसके अलावा हम कुछ मिल वेस्ट भी यूज करते हैं जो कि हम इन सबका एक मिश्रण बना के, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी एग्री वेस्ट की होती है, उसको बना के फिर उसमें हम अपने मशरूम माइसीलियम को उगाते हैं.
1: क्योंकि यहाँ पर आपके बताने से समझ में आता है कि काफी सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो कम होते नजर आते हैं, तो जो हमारा नेशनल क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में किस तरह से हेल्प करेगी ये टेक्नोलॉजी?
0: तो जैसे हमारा ध्येय यही है इस पूरे प्रोडक्शन में भी, हम चाह रहे हैं कि हर जगह सबसे कम वेस्ट उत्पन्न करें और जो हम पोल्यूशन भी क्रिएट होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में हम उसे भी कम करना चाहते हैं. तो जो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स हैं जिसके तहत वो पोल्यूशन और वेस्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो जो हम एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उससे वो कम हो रहा है, जब वो जल नहीं रहा है तो उसकी वजह से AQI भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। और जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाते हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया जो वेस्ट उत्पन्न होता है वो हम बायोफर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेच सकते हैं और वो उसे खाद के तौर पर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज उसका यूज नहीं कर सकते, वो बायोहैजार्ड होता है। उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी उसमें GHG एमिशन नहीं हो रहा है, रादर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेक्वेस्टर कर रहे हैं, तो उससे भी एक जो एनवायरनमेंट को हानि होती है वो नहीं हो रही है। तो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही सस्टेनेबल है। उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं क्योंकि वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी सस्टेनेबल हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा है कि लैंडफिल बहुत क्रिएट हो रहे हैं और वो डिग्रेड नहीं होते हैं। तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे जब डिस्कार्ड होगा या हम उसे रिसाइकल करके, क्योंकि वो कभी तो डिस्कार्ड होगा तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा, तो एक वो भी वेस्ट मिटिगेट होगा और पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जहां भी वेस्ट होता है वहां पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, दे गो हैंड इन हैंड। और उसके अलावा हम UN की SDG गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उससे भी अलाइंड है। 12 हमारा मेजर गोल है विच इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन। उसके अलावा हम बहुत सारे और गोल्स से भी अलाइंड है, इंक्लूसिव हायरिंग, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, वाटर रिलेटेड भी जो गोल्स हैं, तो हम लगभग 10 से 12 गोल से अलाइंड है। लेकिन UN SDG 12 जो है वो हमारा सबसे मेजर गोल है क्योंकि हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं।
1: तो आपकी जो फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव अपैरल की टेक्नोलॉजी है बहुत सारे सेक्टर्स में काम आने वाली है, इससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर होने वाला है। लेकिन जहां तक हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आप इसको बायोमास से तैयार कर रहे हैं मशीन माइसेलियम को, तो जो स्केलेबिलिटी है वो कैसे आप इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई कैसे आप देंगी मार्केट में इसकी?
0: तो आपने सही कहा, इसकी हर सेगमेंट में रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हर सेगमेंट में फायर प्रोटेक्टिव हाई परफॉर्मेंस वेयर जो है वो यूज होते हैं। तो हमें जो स्केलेबिलिटी, अभी हम लैब स्केल पे हैं, हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। जैसे ही हम एक फेज कंप्लीट कर लेते हैं, हमने माइलस्टोन्स और टारगेट सेट करे हुए हैं, जैसे फाइबर हमारा पहला स्टेज है, फिर हमारा फैब्रिक आता है, फिर उससे जो भी एंड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं वो बनेंगे। हर स्टेज पे हम गवर्नमेंट की मदद से और इवन प्राइवेट फंडिंग की मदद से हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे एंड वी विल एक्सपैंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड जो भी हमें आएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। तो जैसे जैसे हम एक एक पद आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हम सेटअप करते जाएंगे अपना और बढ़ाते जाएंगे ताकि हम जो भी डिमांड है उसको मीट करने की कैपेबिलिटी उत्पन्न कर सकें।
1: जैसे मशरूम माइसीलियम है, अभी आप इसको खुद लैब में ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का यूसेज नजर आता है उस हिसाब से आपको लगता है कि लैब में ही रह के इतना जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है, या आप इसमें आगे जो फार्मर्स हैं उनकी भी मदद लेंगे?
0: अभी हम लैब स्केल पे ही कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी है और अभी हमें R&D करना है बहुत हद तक। लेकिन जब हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे और उसमें ऑब्वियसली लैब स्केल पे वो क्षमता नहीं है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए हमें चाहिए होगी। तो हम हर स्टेप पे नया प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, नया सेटअप करेंगे, जैसे जैसे हमें लगेगा कि अब हमें बढ़ने की जरूरत है उस टाइम पे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे। और इसमें हम जितना बढ़ेंगे हम उतने ही लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे क्योंकि बहुत लोगों की हमें भी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पर हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी अगर किसानों की हमें जरूरत है हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, आपस कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब दे सकते हैं। जब हमारी वो क्षमता होगी कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ के उनका भी लाइवलीहुड बेटर कर सकें तो हम ऑब्वियसली वो करेंगे। वैसे भी हमारा प्लान है अंडर मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोगों को अपने यहाँ पे जॉब देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, उन्हें हो सके तो स्किल करने का, ताकि वो आगे चल के अगर वो हमारे साथ भी ना काम करना चाहें तो उनके पास एक ऐसी स्किल हो जो वो कहीं आगे चल के इस्तेमाल करें और कहीं और उन्हें किसी आर्थिक तौर पर उन्हें जॉब भी मिल सके जिससे उनकी और आर्थिक सहायता होगी। तो जितना हम बढ़ेंगे हम लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, हम दूसरी इंडस्ट्री से सभी कोलैबोरेट करेंगे और हम बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे जिससे कि हम एक इकोसिस्टम बना सकें जहां पे सभी थ्राइव कर रहे हो साथ में।
1: अभी तो ये लैब स्केल पे है, लेकिन आगे जब आप मार्केट में आएंगे तो आपने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है कि किस तरह से आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे? और क्या सिर्फ भारत के लिए ही एक बड़ी उपलब्धि है या इसकी ग्लोबली भी डिमांड रहेगी?
0: हमने इसे आगे ले जाने का प्लान तो करा हुआ है, हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी हुई है, जैसे हमारा जो फाइबर बन जाता है तो हम उसको कैसे मार्केट में लेके जाएंगे, फिर हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल को भी टारगेट कर रहे हैं बिकॉज हमारा फाइबर सस्टेनेबल होगा, इनहेरेंटली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होगा, तो इसकी ये भी कुछ काबिलियत है जो हम किसी और प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा, जैसे हमने पहला

0: पेनिट्रेशन कर लिया है फाइबर का, अब हमारा पहला टारगेट है फैब्रिक बनाने का. जैसे ये दोनों चीजें बन जाएंगी, दोनों ही फाइबर और फैब्रिक की डिमांड है मार्केट में, तो ये दोनों चीजें फिर हम उससे बिजनेस एसोसिएट से अपना कोलैबोरेशन करेंगे एंड वी विल सेल आउट दैट. और इसके अलावा फिर हम डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं बिकॉज डिफेंस में बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज सस्टेनेबल. जैसे आप यूरोप वगैरह को देख लें तो वो कार्बन क्रेडिट्स भी दे रहे हैं अपनी कंपनीज को जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन या सस्टेनेबल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं. तो हमारा बाहर भी बहुत स्कोप है क्योंकि ये तो नई टेक्नोलॉजी है और अभी हमें जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हुए हैं इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर. तो जितना भी मार्केट है, इट्स अ ट्रिलियन डॉलर मार्केट सिर्फ डिफेंस और सिविल इंडस्ट्रीज का फायर रिटार्डेंट में, उसे हम बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है. सिंथेटिक से पीपल वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स सस्टेनेबल बायो फैब्रिक्स, और अब बायो फैब्रिक्स में ऐसी कोई कैपेबिलिटी लाना ये बहुत ही बड़ी बात है. तो क्योंकि ये 360 डिग्री इसका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो पीपल आर विलिंग टू मूव टूवर्ड्स दैट. उसके अलावा हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेरेंट है, तो इसकी वजह से कई चीजें और भी हैं और कई लोग और भी हैं जो ऐसी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज को प्रोक्योर करना चाहते हैं. तो इसका हम बाद में एक्सपोर्ट के लिए भी हम जाएंगे, पहले हम इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देंगे, हम पहले अपने फुटस्टेप्स एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे और फिर हमें जो भी ऑर्डर्स मिले हैं उनको पूरा करेंगे. एंड देन व्हेन वी हैव द कैपेबिलिटी वी विल ऑफकोर्स गो फॉर एक्सपोर्ट बिकॉज वी शुड टारगेट एवरी रेवेन्यू एरिया एंड वी शुड मेक आवर प्रोडक्ट ग्लोबल. हम अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कभी भी, और इसमें हमारा भारतीय सरकार भी बहुत सहयोग करेगी जो हमें आईडेक्स से जो के साथ मिलकर जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उनका भी यही है कि हम आगे जाके हम जितना बढ़ सकें, क्योंकि ये भारत सरकार का भी के लिए भी एक नई चीज होगी और उनके लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज सिद्ध होगी.
1: न सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये हितकारी है क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है और अभी तक आई नहीं है वो आपने ईजाद की है,
0: तो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही हम शुरू कर पाए हैं. तो भारत सरकार की जितनी नीतियां हैं आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, और जो उन्होंने आईडेक्स एस्टैब्लिश करा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है, वो डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ाता है भारत में. तो इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि स्टार्टअप के पास कभी खुद का पैसा नहीं होता है, ये बहुत कम ही होगा कि किसी के पास खुद का पैसा है वो शुरू कर पाए. तो भारतीय सरकार सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है कि ये आप लोग कुछ जीते, वो इवन ग्रांट्स देती है अगर हमारे पास कुछ आइडिया है तो उसे सपोर्ट मिलता है. तो हमने जितना भी अभी तक जो भी हम पहुंच पाए हैं इस एक साल के अंदर वो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही पहुंच पाए हैं. हमें काफी सहायता, आर्थिक सहायता मिली है उससे. इवन हम जो इंक्यूबेटेड है अभी IIT कानपुर में, उनसे भी हमें बहुत सहायता मिली है. ये भी इसी कारण हुआ क्योंकि हम आईडेक्स के साथ थे और उसके थ्रू हम पार्टनर इंक्यूबेटर IIT कानपुर को बना पाए जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, और उनके द्वारा भी हमें बहुत सहायता मिली है. उनसे भी हमें कुछ ग्रांट्स उपलब्ध हुए हैं और उनसे भी हमें टेस्टिंग की सबसे ज्यादा सहायता मिल रही है क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं R&D बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर रिलाई करता है, और क्योंकि हम एकदम नई टेक्नोलॉजी कुछ बना रहे हैं तो हमें इस चीज के लिए बहुत सारे टेस्ट करने हैं जो हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन IIT कानपुर ने हमें इसमें बहुत सहायता करी. तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 90% टेस्ट हमने करवाए हैं वो आधे से ज्यादा हमने IIT कानपुर से करवाए हैं, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है टाइम अवेलेबिलिटी में भी और किन्हीं तरीकों से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है हमें IIT कानपुर के द्वारा. तो मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट है, लेकिन आगे चल के भी क्योंकि R&D जब तक हम सैम्पलिंग पूरी कर लें, पहला MVP बना लें, तब तक विच इज मिनिमम वायबल प्रोटोटाइप, जो पहला फंक्शनल प्रोटोटाइप होगा, तब तक हम चाहते हैं भारत सरकार के द्वारा हमें थोड़ी और सहायता मिले और थोड़ा और सपोर्ट मिले और इंकरेजमेंट मिले. तो हम और भी चीजों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी हमारा कनेक्ट होगा और जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उससे हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से हम खुद सक्षम हो जाएं.
1: तो सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा ये स्टार्टअप?
0: देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये सारा हम एग्रीकल्चर वेस्ट यूज कर रहे हैं, फिर वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, उससे हमारा मशरूम ग्रोथ हो रहा है. फिर हम बाद में जब ये प्रोडक्ट देंगे तो हम ये भी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करेंगे कि पहला या दूसरा रिसाइकलिंग जो भी हो वो हमारे पास वापस आए, उसके बाद हम उसको वेस्ट में डालें जिससे कि वो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए. तो ये पूरा ही सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है कि हम वेस्ट भी यूज कर रहे हैं, फिर वी आर टेकिंग सम वेस्ट, वी आर अपसाइकलिंग इट और रिसाइकलिंग इट एंड मेकिंग इट इनटू अ मोर हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जिसकी एक्सपोर्ट में भी रिक्वायरमेंट है. मतलब अगर आप जैसे वेस्ट की बात करें, वो 10 रुपए किलो मिल जाता है हमें, 7 से 10 रुपए किलो के बीच में. अब हम उसको यूज करके हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसकी जिसका पैसा ही लाखों में जाएगा, जो बिक रहा होगा कुछ लाख में एक प्रोडक्ट. तो ये इतना हाई वैल्यूएशन जो हो जा रहा है वो हम उसको वेस्ट को प्रोसेस करके कर पा रहे हैं. तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का ही

0: पार्ट है, तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा सर्कुलर इकोनॉमी पे।
1: तो अगर मैं आपसे आपका विजन और मिशन जानना चाहूँ तो वो क्या लेकर चल रही है भैया?
0: तो जैसे हमारा विजन जो है, और विजन लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक लगे, पर क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होगा तभी हम एक ऐसी जगह सोच रहे हैं जहाँ कोई और ना जा पा रहा हो। तो हमारा विजन ये है कि हम इंडिया को ऐसी प्रौद्योगिक क्षमता दें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, और वो सस्टेनेबल हो और दुनिया भी उससे प्रभावित हो, और अभी जितने भी सिंथेटिक चीजों से चीजें बन रही हैं वो बायो बेस्ड हो जाएं, और हमारे भारत के पास इतनी क्षमता हो कि वो टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए इस चीज में। और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बायो फैब्रिक्स जो हाई परफॉर्मेंस वेयर है उसके सबसे बड़े लीडर बने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, क्योंकि हम लगातार टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे, हमारा यूएसपी यही है। और हमारा मिशन ये है कि हम जितना जल्दी हो सके एक स्टेज तक पहुंच सके जहां पे हम दिखा सके कि अब ये सब कुछ हो गया है, अब बस हमें जग जीतने की देरी है।
1: और आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: जैसे कि सभी जानते होंगे कि स्टार्टअप करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, इतना आसान नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप में थोड़ी भी लगन है, कोई भी आइडिया है जो आपको लगता है कि हमारे देश की उससे उन्नत होगी, उसकी मदद होगी, लोगों की सहायता होगी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कभी ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता। आप एक बार उसको दिल में ठान लीजिए, उसको लेके आगे बढ़िए, वो अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें उसका फल आपको कभी ना मिले, पर मेहनत करना जरूरी है। अगर आपने कहीं भी ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कि कुछ नया है जिससे कई लोगों को बहुत लाभ होगा, हमारे देश को बहुत लाभ होगा, उसकी उन्नति होगी, तो मैं आग्रह करूंगी कि आप सब अगर मुझे देख रहे हैं तो ये चीज करें, क्योंकि हमारे भारत को अभी इन सब चीजों की बहुत जरूरत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, और ये सब आप सबकी की मदद से ही हो सकता है।
1: और मैं यही कहूंगी कि जो देश की रक्षा है वो सिर्फ सीमा पर लड़कर नहीं की जाती, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी, जैसे वसुंधरा जी की टेक्नोलॉजी, और ये इतना सोच रही है कि देश को किस चीज की जरूरत है, जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ी देश सेवा है। वसुंधरा जी, आप अपने मिशन और विजन में जल्दी से कामयाब हो, हम यही दुआ करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और अभी आपने इस चर्चा को सुना, और इस चर्चा को जो चूंकि हमने कार्यक्रम जो उठाया है वो हमारी डीडी किसान से हमने इस कार्यक्रम को लिया गया है, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि इस तरीके की जानकारी उनके सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाने की हम लोग जो पहल कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचेगी, किसान साथियों तक पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो इसका उनको लाभ मिलेगा। वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे इस पते पे। पता है हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। फोन नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इवेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। दोस्तों, आज आसपास कार्यक्रम में अपन सुने एक सामाजिक कवर स्टोरी को। और दोस्तों, एक के संगे संगे पहला सुन लेते एक बढ़िया से गीत को, और गीत के बाद फिर सुने अपन स्टोरी को। तो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
1: आगी लगी आका

हाँ देखो दोस्तों, जो कितनों बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो और ये गीत को आनंद लाओ है दोस्तों। ये गीत को गा रहे थे अमोल अहरवार जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में सुनाते हैं एक बढ़िया सी सामाजिक स्टोरी को। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

नमस्कार दोस्तों, आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दिन के संग में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक लघु कथा, कहां गया शिवलिंग। एक साधु महाराज तीर्थ यात्रा करने निकले, साथ में उनके पास जितना भी धन था उसको भी ले गए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो था नहीं। जब वह इस धन को सुरक्षित रखते तीर्थ यात्रा करते करते वह गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे बहुत भारी भीड़ थी। साधु महाराज को गंगा स्नान करना था, परंतु उन्हें अपने धन की चिंता सताने लगी। इतनी भीड़ में यदि अपने धन को गंगा के किनारे छोड़ते हैं तो उसे चोरी होने का डर है। उनके मन में एक उपाय आया और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। गंगा के किनारे रेत ही रेत थी। साधु महाराज ने उस रेत में अपना धन दबा दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया, जिससे उन्हें जगह की पहचान बनी रही। इसके बाद साधु महाराज निश्चिंत होकर स्नान करने चले गए, परंतु जब वह स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा उस स्थान पर असंख्य शिवलिंग बने हुए थे और साधु महाराज किंकर्तव्य मूड रह गए कि अब इस विशाल शिवलिंग समूह में वो शिवलिंग कहां से ढूंढे जिसके नीचे उनका धन छुपा है। वह अपना सिर पीटते रह गए। लोगों ने बिना सोचे समझे रेत पर शिवलिंग बना दिए। सोचा होगा कि यह भी एक प्रथा है, ऐसा ही है यह संसार। लोग धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं, चाहे उससे किसी का अहित ही क्यों ना हो। इसे ही कहते हैं गतानुगति को लोकः। दोस्तों इस लघु कथा की लेखिका थी सविता शर्मा नोएडा से, और दोस्तों इसको आवाज और म्यूजिक से सजाया है आपके रेडियो साथी माता दीन कुशवाहा जी ने।

हाँ देखो दोस्तों, जापान सब जन ने स्टोरी सुनी और ई स्टोरी से अपन को कछु सीख सोले ने। अब दोस्तों एक के संगे संगे बिलादरी से अपनी स्टोरी को सुनना है। आप और कह रही है कि माता दिन भैया मनोरंजन को बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन के लाने हमें आप सब जन को ध्यान है। सो मनोरंजन में सुना थे अपन एक बढ़िया से गीत को, लेते गीत को आनंद।